एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड

0: क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। चिंतन

तपस्या से मनुष्य के सभी विकार शुद्ध हो जाते हैं। तप विकारों का नाश करता है। प्रतिदिन वेदाभ्यास, शक्ति के अनुसार पंच महायज्ञ और शांति धारण करना, ये कार्य महापातकियों के विकारों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से क्षण भर में ही लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से सभी विकारों का नाश कर देता है।

हे शिव शंकर भगवान, आपका गुणगान तो तीनों लोक करते हैं। हे भगवान, आप अपनी कृपा सदैव हम सब पर बनाए रखना।

सगुणातीत ईश्वर की प्राप्ति भक्ति और योग के द्वारा हो सकती है। इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 120।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओ, अब से कुछ ही देर में यानी प्रातः 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी प्रसारित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में बात होगी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। 8:30 पर सुनिए गाने सुहाने। 8:45 पर कानून की बात आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 9:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। 10:00 सुनिए गीतों का कारवां। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में। 11:05 पर पंजाबी गीत सुनिए कार्यक्रम महक पंजाबी में। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कुछ भजन। 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। 6:00 का समय रहेगा 6:05 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया। 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम विदेश नीति प्रसारित किया जाएगा। 8:00 सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 9:15 पर एक ही संगीतकार के क्रम में आज सुनिए संगीतकार सोहेल सेन के संगीतबद्ध गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की में। और 10:00 आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से 9:20 11:00 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:45 पर समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9:00। 1:00 5:00 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 5:05 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओ, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम अद्य आरभ्यमाणस्य द्विपञ्चाशत्तमस्य G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागं अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेश मंत्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेष सूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेश सचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30+2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्यविमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानं आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानं अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270+ यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26+2000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां ICC 20x20 विश्वचषकक्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
3: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
2: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्वकप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह सुहानी। सुबह सुहानी।

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहाने के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज के विचार के साथ।
1: आज का विचार।
0: क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोले गए शब्द हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। शांत मन से सोचना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि शांत पानी में ही आसमान साफ दिखाई देता है। आज अपने मन को शांत रखिए और प्रेम से भरे शब्द बोलिए।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। श्रोताओं, आज 15 जून है और 15 जून का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। पंद्रह जून 1908 में कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 15 जून 2002 में कनाडा के हैलिफैक्स में G8 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक शुरू हुई थी। पंद्रह जून 2006 में भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था। पंद्रह जून 2008 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी थी। आज ही के दिन 15 जून 1932 में भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर का जन्म हुआ। और आज ही के दिन जन्म हुआ 1929 में प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया का। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उन्हीं की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज 15 जून है और 15 जून के दिन मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। श्रोताओं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सहन किए जाने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और भेदभाव के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार के खिलाफ लोगों को एकजुट करना, उपेक्षित वृद्धजनों को पहचान, समर्थन और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समाज और सरकारों को प्रेरित करना। इस दिवस की शुरुआत जून 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी। इसके बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 66/127 पारित करके इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब समय है समाचारों की सुर्खियों का।
1: खबर आज की।

श्रोताओ, आज की समाचारों की सुर्खियों के साथ अब आपको जानकारी देते हैं कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीस दौरा संपन्न हुआ। भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने पर इस पर चर्चा हुई। ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा, ओमान के स्थानीय अधिकारियों, पोर्ट अधिकारियों और शिपिंग कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी ब्रातिस

ओटावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से करेंगे बातचीत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और कार्यक्रम में आप आपको जानकारी देंगे आज की मौसम की। श्रोताओं, आज अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज गरज चमक और तेज हवाओं का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कार्यक्रम में अब मौसम की जानकारी तो आपको दे दी है, लेकिन अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद अब कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: सुबह सुहानी। सुबह सुहानी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
6: कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सपना कुमारी और पूनम शर्मा की आवाजों में गाया ये लोकगीत।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: SUV का स्टाइल दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
2: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
1: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
2: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
5: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
10: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
11: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय

0: बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता,

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
7: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म दो रास्ते का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती। 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने सुहाने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा।

मीडिया पेपर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कानून की बात। विषय है परिवीक्षा से संबंधित कानून। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार, न्यायालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, संतुलन और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो दंड के साथ साथ सुधार और पुनर्वास की भावना को भी महत्व देता है, परिवीक्षा से संबंधित कानून। परिवीक्षा क्या है, इसका लाभ किन परिस्थितियों में मिलता है, न्यायालय इस संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं और ये व्यवस्था किसी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने में किस प्रकार सहायक होती है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कांगड़ा धर्मशाला। माननीय महोदय का कार्यक्रम कानून की बात में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि परिवीक्षा क्या होती है।
1: परिवीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेशन कहते हैं, ये सर शब्दों में कहें तो अदालत किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर जेल भेजने के बजाय उसे एक सुधार का अवसर देती है, इसी को हम प्रोबेशन कहते हैं। अदालत ये उम्मीद करती है कि वो भविष्य में अच्छा व्यवहार करेगा, कानून का पालन करेगा और दोबारा कोई अपराध नहीं करेगा, तो उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में उसको बेनिफिट मिलता है।
0: भारतीय न्याय व्यवस्था में परिवीक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
1: देखिए, इंसान से गलती हो जाती है, हर गलती करने वाला व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं होता, ना हम ऐसा मानते हैं। कई बार व्यक्ति आवेश में आकर गलत संगत में या किसी विशेष परिस्थिति में अपराध कर बैठता है, ऐसे लोगों को जेल भेजना जरूरी नहीं माना गया है। इसलिए कानून में सुधार और पुनर्वास की सोच को महत्व देते हुए परिवीक्षा प्रोबेशन की व्यवस्था की गई है।
0: न्यायाधीश महोदय, क्या परिवीक्षा का उद्देश्य केवल सजा से राहत देना है या सुधार का अवसर भी प्रदान करना है?
1: देखिए, परिवीक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सुधार का अवसर प्रदान करना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। परिवीक्षा की व्यवस्था भी इसी मानवीय सोच को लेकर बनी है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने का एक अवसर दिया जा सकता है या नहीं।
0: परिवीक्षा अधिनियम 1958 की मुख्य विशेषताएं क्या है?
1: परिवीक्षा अधिनियम 1958 यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो अधिनियम है। धारा 6 जो है इसकी, वो ये कहती है कि यदि कुछ कम गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है तो अदालत उसे समझाकर, उसकी भर्त्सना करके या उसे

0: चेतावनी देकर भी छोड़ सकती है, उसे हम जेल में नहीं भेजेंगे। जो धारा 4 है, अदालत को ये अधिकार देती है कि यदि उसे लगे कि व्यक्ति के सुधरने की संभावना है तो उसे जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर, कि वो अच्छा आचरण करेगा, इस शर्त पर उसे छोड़ सकती है। और धारा 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहती है कि यदि दोष सिद्ध जो व्यक्ति जिसको दोषी पाया गया है वो 21 वर्ष से कम आयु का है तो उसे जेल भेजने से पहले अदालत को ये विचार अवश्य करना चाहिए और करना पड़ेगा कि उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना है या नहीं। इन प्रावधानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कानून केवल दंड पर नहीं बल्कि सुधार पर जोर देता है।
1: आपने धारा 3 का उल्लेख किया, ये चेतावनी देकर छोड़ना क्या होता है?
0: देखिए, कुछ कम गंभीर मामले जहां व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं, अदालत उसे केवल चेतावनी देकर या समझाकर उस व्यक्ति को, उस दोषी को छोड़ सकता है। सिंपल शब्दों में मैं ये कहूंगा कि अदालत उस व्यक्ति से कहती है कि उसने अपराध किया है, अपराध सिद्ध हुआ है, भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करना, और उसे अवसर देती है कि वो अपना सुधार कर सके। समझाकर छोड़ना उसको जो है हम धारा 3 में करते हैं।
1: न्यायाधीश महोदय, किन परिस्थितियों में अदालत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ दे सकती है?
0: अदालत जब परिवीक्षा देने की बात करती है तो इन विचारों पर जरूर ध्यान रखती है कि अपराध की प्रकृति क्या है, क्या कोई बहुत सीरियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति का पूर्वाचरण कैसा था, क्या पहले भी वो ऑफेंसेस करता रहा है, क्या उसने पहली बार अपराध किया है, उसकी आयु क्या है, उसकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या रही हैं, तथा क्या वो व्यक्ति उसमें सुधार की संभावना है। यदि ऐसी बातें हों तो हम परिवीक्षा का लाभ जो है वो दोषी को प्रदान करते हैं।
1: क्या हर व्यक्ति परिवीक्षा का लाभ पाने का पात्र होता है?
0: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर मामले में परिवीक्षा नहीं दी जा सकती, ये अदालत के विवेक और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गंभीर और जघन्य अपराध, इन अपराधों में सामान्यतः इसका लाभ नहीं दिया जाता।
1: न्यायाधीश महोदय, किन प्रकार के मामलों में सामान्यतः परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है और किन मामलों में सामान्यतः नहीं दिया जाता?
0: ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 सामान्यतः उन अपराधों में लागू होती है जिनमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है और जहां न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति जो है उसमें सुधरने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर जैसे पहली बार कुछ कम गंभीर किया गया अपराध, साधारण मारपीट का मामला, साधारण चोट पहुंचा देने का, या छोटे मोटे झगड़े, या जैसे चेक बाउंस का केस है, उनमें भी किन्हीं परिस्थितियों में जो है अगर वो गंभीर नहीं है अपराध तो उसमें परिवीक्षा का जो है वो बेनिफिट दिया जा सकता है। और धारा 3 में जैसे मैंने पहले कहा उसमें चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मामला संगीन है, कोई संगीन अपराध किया है जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, आतंकवादी गतिविधियों में वो व्यक्ति जो है वो संलिप्त रहा है तो उन अपराधों में ये बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा सकता। जो बार बार अपराध करते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको भी जो है प्रोबेशन का हम बेनिफिट नहीं देते।
1: क्या महिलाओं और किशोरों के मामलों में परिवीक्षा का विशेष कोई प्रावधान है?
0: ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। इसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई विशेष जो है वो धारा नहीं है इनको बेनिफिट देने की, लेकिन उनका महिलाओं का जो मामला है वो भी परिवीक्षा के लिए उपयुक्त है। उनको धारा 4 की अगर बाकी जो है कंडीशंस उसमें फुलफिल होती हैं तो अच्छे आचरण पर महिला को भी जो है, महिला अपराधी को भी छोड़ा जा सकता है। पुरानी जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी 1973 की, उसमें धारा 360 थी और अब जो नई भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसका धारा 401 महिलाओं को जो है उसमें महिलाओं के लिए विशेष जो है उल्लेख है और उपयुक्त मामलों में उन्हें अच्छे आचरण पर छोड़ा जा सकता है।
1: आम लोगों में ये धारणा है कि परिवीक्षा का मतलब अपराध को माफ कर देना है, क्या ये सही है?
0: नहीं, अपराध की माफी ऐसे नहीं होती, अपराध माफ नहीं किया जाता, लेकिन उस व्यक्ति में जब सुधार की संभावना है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे अच्छे आचरण पर या चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है।
1: परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को किन नियमों और शर्तों का पालन करना होता है?
0: बेसिकली तो उसे अपना आगे को व्यवहार अच्छा रखना होता है, कानून का पालन करना होता है और भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेगा, ऐसी शर्तें उस पर लगाई जाती हैं और उन शर्तों का पालन करना उसके लिए आवश्यक होता है।
1: न्यायाधीश महोदय, यदि कोई व्यक्ति परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करे तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं?
0: वो तो सीधी सी बात है, अगर वो पालन नहीं करता है अदालत जो है उसकी प्रोबेशन को खत्म कर देगी, उस बेनिफिट को समाप्त कर देगी और उसे फिर जो है वो जो उसको सजा होनी है वो सजा जो उसको हुई है या जो सजा करनी है उसके लिए उसको जेल भेज देगी।
1: परिवीक्षा अधिकारी यानी प्रोबेशन ऑफिसर की क्या भूमिका होती है?
0: इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कई बार कोर्ट इनसे इन्फॉर्मेशन गेन करता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसका पहले आचरण कैसा रहा?

0: है, ये रिपीट ऑफेंडर या हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। और जो अगर प्रोबेशन का बेनिफिट अगर उसको दे दिया जाए तो जो परिवीक्षा अधिकारी होता है ये उसके व्यवहार पर भी नजर रखता है उस दोषी के, उसे मार्गदर्शन देता है और उसकी प्रगति के बारे में कोर्ट को जानकारी देता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो सुधार के मार्ग पर चल रहा है।
1: क्या परिवीक्षा व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रभावी माध्यम है?
0: ये डेफिनेटली उसको तो जो है वो एक मौका इसीलिए दे जा रहा है कि वो अपराध ना करे, वो अपना सुधार करे और उसको मुख्य धारा में जो है दोबारा उसको भेजा जा सके, वो सामान्य जीवन जी सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके।
1: परिवार और समाज पुनर्वास में किस तरह सहयोग कर सकते हैं?
0: परिवार की बड़ी अहम भूमिका रहती है। परिवार तो ऐसा है कि पहले उसको बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार दे दिए गए हैं तो अपराध से रोक सकता है, अपराध के मार्ग पे जाने पे। लेकिन अगर हो गया है किसी कारणवश और उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये बेनिफिट मिला है प्रोबेशन का, तो उसको जो है हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। उसको कोई ताने देने की जरूरत नहीं है, उसको ताने नहीं मारने हैं, बल्कि उसका सहयोग करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि हो गया, अब आप अच्छे इंसान बनिए, आगे को जो है कोई अपराध नहीं करिए और अपना सुधार करिए।
1: क्या परिवीक्षा से जेलों पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी मदद मिलती है?
0: बहुत सी जेलें भरी पड़ी हैं अपराधियों से, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में या प्रोबेशन का बेनिफिट देते हैं तो जेल में तो ऑब्वियसली वो संख्या जो है वो कम रहेगी, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगी।
1: और किन गलतफहमियों के कारण लोग परिवीक्षा के बारे में सही जानकारी नहीं रख पाते?
0: गलत फहमियां प्रोबेशन को लेकर अक्सर ये रहते हैं कि लोग समझते हैं कि ये अपराध की माफी है, लेकिन अपराध की माफी नहीं है, वो तो उसको एक मौका दिया गया है कि वो अपना सुधार कर सके। एक गलत फहमी ये भी होती है कि अगर प्रोबेशन मिल गई तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो अपनी मर्जी आएगी वो करेंगे, वैसा नहीं होता है। उस पर जो अदालत ने शर्तें लगाई हैं प्रोबेशन में छोड़ने के लिए, उनको उसको जो है आवश्यक रूप से उसका पालन करना होता है, भविष्य में अच्छा आचरण करना होता है। कई लोग ये मान लेते हैं अपराध कर दिया अब हमें प्रोबेशन मिल जाएगी, वैसा भी नहीं है। प्रोबेशन तभी मिलेगी जब अदालत को लगता है परिस्थितियों से कि ये व्यक्ति में सुधार हो सकता है, मामला बहुत संगीन नहीं है, इससे पहली बार गलती हुई है, तो इन चीजों को देखते हुए उसको जो है छोड़ा जा सकता
1: क्या परिवीक्षा की व्यवस्था केवल परिवीक्षा अधिनियम में ही है?
0: है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी 1973 की, उसकी सेक्शन 3360 में ये प्रोविजन थी अच्छे आचरण पर छोड़ने की। अभी वो जो धारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 में भी ऐसी प्रोविजन है कि अदालत कुछ उपयुक्त मामलों में व्यक्ति को अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ सकती है। तो 402 जो है वो अब धारा BNSS की, वो ये मैंडेट करती है कि हर मामले में पहले जो है वो ये देखा जाए कि क्या ये बेनिफिट दिया जा सकता है प्रोबेशन का या नहीं दिया जा सकता। अगर नहीं दिया जा सकता उसके कारण दर्ज करने पड़ेंगे, रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों नहीं बेनिफिट उसको दिया जा रहा। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, इसकी जो है एनफोर्समेंट ऑब्वियसली जो इसके एम्बिट में आते हैं उनमें होगी, और ये एक विशेष कानून है, तो इस वजह से इसका भी जो है वो ध्यान में अदालतें रखती हैं बेनिफिट देते समय।
1: न्यायाधीश महोदय, हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, युवा पीढ़ी तो देश का भविष्य है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं है सक्सेस के लिए। तो हमारे युवा हैं वो मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, अपने जीवन में अनुशासन रखें, अच्छे संस्कार रखें, तो ये चीजें उनको जो है वो बेनिफिट करती हैं। कई बार एक क्षण का गुस्सा होता है, आदमी लड़ पड़ता है, कहते ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो वो थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप पर जो है वो कंट्रोल रखें, गलत संगति में ना जाएं, ये नशे आजकल जो चल रहे हैं इनसे दूर रहें, जल्दबाजी में किसी को एकदम ऐसे रिएक्ट नहीं करें, जो है अपना विवेक से कार्य करें जीवन में, अपना माता पिता, अपने उनसे जो गुरुएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके मुताबिक चलने का प्रयत्न करें, तो उनका जीवन जो अच्छा रहेगा। और सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव रहें और समाज के लिए कुछ करने का प्रयत्न करें, कम से कम अच्छे इंसान बने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: अंत में परिवीक्षा संबंधी कानूनों के बारे में आम नागरिकों को कौन सी महत्वपूर्ण बातें अवश्य जाननी चाहिए?
0: जहां तक हो सके अपराध की दुनिया से जो है दूर रहें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी कोई गलती हो गई है जो जघन्य या बहुत गंभीर अपराध नहीं है, तो उसमें उसको ये बेनिफिट मिलेगा, और इस बेनिफिट को जो है उसको प्रॉपर वे में उसको यूज करना है। वो गलत अपराध आगे ना करे, जो शर्तें उस पर लगाई गई हैं उनका पालन करे, तो दोषी व्यक्ति जो है वो सुधर सकता है। ये सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम अपने जीवन के जो है स्वयं ही निर्माण करता है और अपने ही विनाश करता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम वसा दयेत, अर्थात कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को ऊंचा उठा सकता है या स्वयं को नीचे गिरा सकता है। तो हम अपने ही मित्र हैं, और हम अपना ही जो है हमारा मन जो है वो अगर गलत धारणाओं में या गलत भावनाओं में चले जाएगा तो हम अपना पतन कर सकते हैं। और एक शेर भी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सब हम पे निर्भर करता है हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही कहूंगा, सोच विचार करके जीवन में इंसान आगे बढ़े और युवा पीढ़ी अपना ध्यान रखे।
1: डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, आपने परिवेक्षा कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अत्यंत सरल और उपयोगी जानकारी देकर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। इसके लिए आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सुधार और पुनर्वास के अवसर प्रदान करना भी है। परिवीक्षा की व्यवस्था इसी सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी आशा के साथ कि आप भविष्य में भी कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते रहेंगे, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रही थी कानून की बात, विषय था परिवीक्षा से संबंधित कानून। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी रिले किया गया।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का यह खुशनुमा समा, यह महफिल और आप सभी की मौजूदगी इस कार्यक्रम की रौनक को और बढ़ा रही है। जब माहौल में खुशियां हो, चेहरों पर मुस्कान हो और दिलों में उत्साह हो, तब हर पल यादगार बन जाता है।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं श्रोताओं आपके साथ अनुराधा। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यूं ही जारी रहेगा। प्रातः 9:30 पर भी आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिलों को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों का आज शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। आज शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में निर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून की पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन 4 नगर निगमों में नए महापौर और उपमहापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। उल्लेखनीय है कि 17 मई को मतदान और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारियों में मौजूद कर्मियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। वे कल शिमला में एक निजी विद्यालय में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों को भी नई पीढ़ी तक पहुँचाए। इस दौरान सुरेश कश्यप ने छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्ष भर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे।

0: पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा जिला में भी पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों का ग्राफ बढ़ा है और पर्यटक जिला के पर्यटन स्थलों खजियार, डलहौजी व चंबा जिला मुख्यालयों में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पिछले कल भी खजियार डलहौजी मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही और हजारों पर्यटक करीब चार घंटे जाम में फंसे रहे। सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
1: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम चार घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।
2: बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
3: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, ना वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली तीन घंटे से हम ट्रैफिक में, ना पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम तीन तीन घंटे तक ना फंसे टूरिस्ट।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके बाद युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल रही है। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर में पिछले तीन वर्षों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
4: को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर जिला में पिछले तीन सालों में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 166 युवतियों व महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गत तीन वर्षों में 72 महिलाओं ने अपना स्वयं का रोजगार सृजित किया है, जबकि अन्य 94 प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं रोजगार के लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम महिलाओं को स्वावलंबन दिशा की तरफ बढ़ा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज से 18 जून तक बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण रिकॉम्पियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए 66 प्रतिभागियों का पारंपरिक खातक और किन्नौरी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आईटीबीपी के उप कमांडेंट वीरेंद्र सिंह और माई भारत हिमाचल प्रदेश के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता का सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं का समझाना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, हिमाचल और पंजाब में 8 ठिकानों पर ईडी ने दी दबिश, सांगला घाटी में होगी ग्रीन टूरिज्म की शुरुआत, सरकार ने तैयार किया प्लान, हिमाचल दस्तक की एक खबर है। मौसम की खबर को अमर उजाला और पंजाब केसरी ने लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, 7 जिलों में अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, 20 तक मौसम खराब। दैनिक भास्कर के अनुसार मिलिट्री स्कूल चाइल्ड के पूर्व छात्रों को मिला राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान, स्कूल टाइम के बाद नहीं होगी जनगणना शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, हमीरपुर समेत कई जिलों में आदेशों में हुआ संशोधन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ, कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण

0: रोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधर चलने का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म मेजर साहब का ये गीत।

0: this June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म गुप्त में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में लीजिए सुनिए फिल्म दिल तो पागल का है ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC apply. This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: फिल्म कलाकार से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं मनोज किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना इंदिवर और मनोज कुमार की है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए सोनू निगम, जयेश गांधी और साथियों की आवाजों में फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सपना, लक्ष्मी और पूनम की आवाजों में गाए इस लोकगीत के साथ।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मान सिंह और ऋषिका शर्मा की आवाजों में लीजिए, सुनिए ये बेहद खूबसूरत लोकगीत।

0: राहुल, क्या बात है? आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर।

श्रोताओं, ये लोकगीत आपने सुना सोना और सखियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं शेर सिंह की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जा रही है। शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उधर कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में नवनिर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून को पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में नए महापौर और उप महापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। गौरतलब है कि नगर निगम के लिए 17 मई को मतदान हुआ था और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे। प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आजीविका सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: सरकार की नई चराई नीति समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। इस नीति में चराई प्रबंधन को पर्यावरण संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाया गया है। पशुपालन विभाग के सहयोग से वन विभाग एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। इसमें पशुपालकों को 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। इस जानकारी को हिम परिवार और भारत पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान और विवरण का सत्यापन आसानी से हो सकेगा। नीति की खास बात यह है कि बिना औपचारिक अनुमति के वर्षों से चराई कर रहे पारंपरिक पशुपालकों को भी मान्यता मिलेगी। पंजीकरण के साथ स्थानीय चराई सलाहकार समितियां मामलों की समीक्षा कर नए परमिट जारी करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा। ये आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्षभर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। बाहरी राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा जिला में भी पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों का ग्राफ बढ़ा है और पर्यटक जिला के पर्यटन स्थलों खजियार, डलहौजी व चंबा जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
2: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम 4 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
3: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे, न वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली 3 घंटे से हम ट्रैफिक में, न पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम 3-3 घंटे तक ना

0: as a tourist.
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी। कार्यक्रम महक पंजाब दी सुनने वाले साढ़े सारे श्रोताओं नू मेरी यानी मीनाक्षी दी प्यार भरी नमस्ते ससरिया काल। कार्यक्रम की शुरुआत असी कर रहे ने सतिंदर सरताज की आवाज़ विच गाए इस गीत दे नाल।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: महक पंजाब दी कार्यक्रम तुसी सुन रहे हो अपनी आरजे मीनाक्षी नाल, ते हुण तुहानू सुना रहे ने रंजीत बावा दी आवाज़ विच ए पंजाबी गीत।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: श्रुतो पंजाबी गीतां ते लोक गीतां दा कार्यक्रम महक पंजाब दी तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी ते धर्मशाला केंद्र ते FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: हुण तुसी सुनोगे सुरजीत बिंद रखिया दी आवाज़ विच ए पंजाबी गीत।

0: महक पंजाब दी कार्यक्रम वे ते आखिर विच तुहानू सुना रहे ने मन्नत नूर ते अमी विरक दी आवावा अजवावा विच गाए इस गीत दे नाल।
1: उन्हां च विआह नहीं हुंदा, उन्हां च कल्ला प्यार हुंदा।
2: जानवर किसे थां दे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाबी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM एंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 होने को है। अब आपको सुनवाते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
1: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं 6वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
1: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर

0: पर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।

0: तो फिर?
1: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह,
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
1: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
1: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
1: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
1: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
1: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
1: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
7: अप्पू।
1: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
7: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
7: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
7: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी।
7: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में

0: और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लो।
0: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: श्याम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?

0: कितने चाहिए? कितने?
1: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
0: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
1: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
1: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर
1: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
0: दे दो।
2: ये लो।
1: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
1: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
0: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
0: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
0: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
1: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
0: खरीदे हैं।
4: पैसे?
1: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
0: दोपहर को दिए थे ना।
1: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
1: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
0: बुरे कंचे हैं, है ना?
4: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
0: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
4: बहुत अच्छे लगते हैं।
1: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
5: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की

0: की टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गाए फिल्म अमृत के इस गीत के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। सैनिक भाइयों, ये गीत है फिल्म वारिस से, गायक कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

आज सोमवार का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज हम सुनो सखी कार्यक्रम में कर रहे हैं हिमाचल की संस्कृति की बात। तो इस कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का आज के इस हिमाचल संस्कृति के अंक में। सखियों, जब भी हम अपने राज्य की यानी कि हिमाचल की संस्कृति की बात करती हैं तो हमारे चेहरों पर अलग ही मुस्कान आ जाती है और सुकून का एहसास हमें होता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो इतनी अद्भुत है, विशाल है और सुंदर है कि इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और ऐसी संस्कृति को देखना यानी कि मन में सुकून

का अनुभव होता है। हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत, हरी भरी वादियाँ, कल कल बहती नदियाँ और झरने, साथ ही हमारी सदियों पुरानी परंपराएं, बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा। लेकिन हिमाचल केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदेश ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति, लोक कला, लोक संगीत और लोक जीवन का जीवंत उदाहरण भी है। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों देवी देवताओं की मान्यता है। लगभग हर गांव का अपना देवता या देवी होती है, जिनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा है। गांव के लोग देवताओं में बेहद आस्था रखते हैं और सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में देव परंपरा का विशेष महत्व होता है। साथ ही मौसम की अगर बात करें तो हमेशा सुहाना मौसम होता है। बेहद खूबसूरत पहाड़ जो गर्मियों में भी हमें ठंडक देते हैं, ताजगी का एहसास हमें करवाते हैं। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का सुनो सखी में, जहां हिमाचल संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। सुंदर प्राकृतिक नज़ारे और देवताओं में आस्था के बाद अब बात करते हैं हिमाचल की संस्कृति का सबसे आकर्षक पक्ष पर, जो है यहां के मेले और त्यौहार, जिसमें सबसे पहले जाना जाता है कुल्लू का दशहरा, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। सैकड़ों देवी देवताओं की शोभा यात्राएं और लोक नृत्य इस उत्सव को विशेष बनाते हैं। इसी प्रकार मंडी की शिवरात्रि, चंबा का मिंजर मेला, सुजानपुर का मेला, सिरमौर का रेणुका मेला, किन्नौर का फूलेच उत्सव और लाहौल स्पीति के बौद्ध पर्व हिमाचल की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। इन मेलों में केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि लोक कला, हस्तशिल्प और लोक संगीत की झलक भी हमें देखने को मिलती है। और हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही बहुत सी खरीदारी हम करती हैं और बहुत से लोगों से हमारा मिलना भी हो जाता है।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में

0: जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से श्रोता सखियों का स्वागत हिमाचल संस्कृति के अंक में। सखियों, जब बात हिमाचल की संस्कृति की हो और लोक नृत्य तथा लोक संगीत का उल्लेख ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं। हिमाचल का लोक संगीत यहाँ के लोगों की भावनाओं, संघर्षों और जीवन शैली का दर्पण है। हिमाचली नाटी यहाँ का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे सामूहिक रूप से किया जाता है और इसकी मधुर लय हर किसी को आकर्षित करती है। किन्नौरी नृत्य, कांगड़ा का झमाकड़ा, चंबियाली नृत्य, घुरेही और लाहौली नृत्य भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और लोकगीतों में प्रेम, प्रकृति, वीरता और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। ढोल, नगाड़ा, करनाल, शहनाई और नरसिंगा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र लोक संगीत को और भी जीवंत बनाते हैं। हिमाचल की संस्कृति अपने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। कुल्लू और किन्नौर की शॉल, चंबा रुमाल, कांगड़ा की चित्रकला तथा लकड़ी की नकाशी यहाँ की पहचान है। हाथ से बुने ऊनी वस्त्र हिमाचल की ठंडी जलवायु और हस्तकला दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा भी इसकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरुष आमतौर पर चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता और प्रसिद्ध हिमाचली टोपी पहनते हैं, वहीं जो हमारी महिलाएं हैं वो पहनती हैं पट्टू, घाघरा चोली, नुआंचड़ी और सुंदर आभूषण। हर मौके पर ख़ास तरह से तैयार होती हैं और अपनी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं।

गीत के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपनी सभी श्रोता सखियों के बीच हिमाचल की संस्कृति की झलक लेके। तो सखियों, त्योहारों, प्राकृतिक नज़ारों और पहनावे के बाद अब बात करते हैं खान पान की। तो हिमाचल की धाम, बबरू, चना मद्रा, सेपू बड़ी, पतरोड़े और सिड्डू यहाँ के बेहद लोकप्रिय व्यंजन हैं जो खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। तो इन्हीं में से एक जो मुझे भी बेहद पसंद है तो आज हम बनाते हैं, जिसे कहते हैं सिड्डू। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सखियों, सबसे पहले हम एक कटोरी उड़द की दाल एक बर्तन में भिगोने रख देंगे, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे 4 से 5 अखरोट, 4 से 5 बादाम, 2 चम्मच कच्ची मूँगफली, इन्हें 2 से 3 घंटे तक हम भिगोने के लिए रख देंगे। अब हम सिड्डू का आटा गूंद देंगे। उसके लिए 3 कटोरी आटा और 1 चम्मच ड्राई ईस्ट डालकर हम इस आटे को गूंद लेंगे और फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 घंटे रख देंगे। जब हमारा ये आटा फूलकर 2 गुना हो जाएगा तो हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जिससे हम भीगी दाल डालेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट, 2 प्याज, 2 से 4 लहसुन की कलियां, ताज़ा धनिया मुट्ठी भर और नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 हरी मिर्च और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। फिर जार से निकालकर आटे की बड़ी सी लोई लेकर उसे थोड़ा सा बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और उसमें ये स्टफिंग हम भर देंगे। इस तरह से हम इन्हें तैयार कर लेंगे और स्टीमर में स्टीम लगा लेंगे। सिड्डू की शेप अच्छे से देनी है। जितनी देर में ये पकेंगे उतनी देर में हम चटनी तैयार कर लेंगे, जिसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीने की पत्तियाँ, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, भीगे हुए मेवे, सफ़ेद तिल, नमक स्वाद अनुसार और खटाई के लिए नींबू या इमली के सिरके का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी तो सखियों हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, तो इसका मतलब हमारे सिड्डू भी, अब हम चेक करेंगे अच्छे से, अगर फूल के 2 गुना हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिड्डू भी अच्छे से पक गए हैं। तो गर्मा गर्म सिड्डू का हम मज़ा लेंगे देसी घी और चटनी के साथ। तो सखियों, ये हिमाचली जायका जिसका मज़ा आप भी ज़रूर लें। और अब हमारा जो समय हो रहा है वो है मनोरंजन का, तो आइए साथ में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचल संस्कृति पर विशेष कार्यक्रम सुनो सखी का। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देश

0: देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
1: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
2: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways, and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life of ordinary citizens. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal.
3: This year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks. Since last year, we've maintained, so there shouldn't be a food shortage. But for farmers, it'll have an impact because this year, his income will be stressed out.
2: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of International Day of Yoga 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the International Day of Yoga 2026 in New Delhi, the minister noted that the theme for International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today. Following the announcement of a peace deal between the United States and Iran, the Sensex climbed 922 points to 76,450, while the Nifty rose 287 points to 23,910 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: का गाया ये गीत दूरियां इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं। ऐसा क्यों भाई, अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफ़र वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव।

किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे, और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की

धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और देखिए आपके साथ हुआ भी। मंगलसूत्र जैसी चीज़ गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह की तरह तरह की चिड़ियों को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठे सबके कंधे।

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में हैं वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में साथ एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफ़र का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती ज़िंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल ज़रूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, ज़िंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाज़त नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
8: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
10: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
8: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
11: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
8: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
12: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
8: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
13: जैसा कि हम जानते हैं इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
8: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा

0: अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध

0: ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्न लाल भगतराम ने। सुरैया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: है सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए नेहा गरकर देसाई को, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर सहित सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को आज पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी 11 जिलों में शपथ समारोह आयोजित किए गए। कांगड़ा में 18 जून को शपथ दिलाई जाएगी। शिमला में 441 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष रूप से मौजूद रहकर नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत विशेष शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाते हुए युवाओं को जागरूक करने और नशीली दवाओं की बिक्री व सेवन पर रोक लगाने में सहयोग देने का आह्वान किया। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। सोलन में हुए समारोह में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
2: हमने प्रधानों को कहा है कि जिस जिम्मेवारी और विश्वास से वहाँ की आपके पंचायत की जनता ने आपको चुना है, उस पे आप खरे उतरेंगे और जो विकास का पैसा आपकी पंचायतों में आएगा उसका एक एक नए पैसे का सदुपयोग होगा और जो पात्र व्यक्ति है, जो हमारा गांव में सबसे निम्न स्तर पे जो व्यक्ति है जिसको सबसे अधिक जरूरत है उसका ख्याल रखा जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
1: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने हमीरपुर में शपथ दिलाई। प्रदेश

0: में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मेगा मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व राहत एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के सहयोग से मॉक ड्रिल हुई। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के 7 उपमंडलों में मॉक ड्रिल करवाई गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि ऐसे अभ्यासों से विभिन्न एजेंसियों के बीच मौजूद कमियों और समन्वय संबंधी चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
1: मॉक ड्रिल हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी एजेंसीज कितनी क्विक हैं रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में। सबसे जरूरी इस बात का आंकलन रहता है कि

0: और उसको कैसे पूरा किया जाए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने की सलाह दी है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने का परामर्श दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया है। शिमला में कल शाम क्रिकेट कार्निवाल 2026 के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा छोड़ो खेल खेलो का नारा वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को चिट्टे व अन्य नशों से दूर रहने और खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई।
2: सभी डिप्टी कमिश्नर्स एसपीज को और जिला के अधिकारी है उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो स्कूलों में जाएं और जागरूक करें ताकि चिट्टे के जो सप्लायर है जो इसमें लत में डालना चाहते हैं उससे युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए। मेरा ये विश्वास है कि हम जल्दी ही प्रदेश में इस प्रकार के जो चिट्टे के सप्लायर है उनको तो ध्वस्त करेंगे ही और अपने समाज को भी चिट्टा मुक्त समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है मोदी सरकार के 12 साल, वैश्विक संकटों के बीच खाद्य उत्पादन में भारत ने गढ़े सफलता के कीर्तिमान। वाचक स्वर है प्रभाष शर्मा का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के उर्वरक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रभावी कदम उठा रहा है। इन्हीं कदमों ने वैश्विक स्तर पर आए बड़े संकटों से हमारे अन्नदाताओं को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों और हमलों के कारण पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा गई। प्राकृतिक गैस और अमोनिया जैसे कच्चे माल की भारी किल्लत हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन भारत सरकार ने शुरुआत से ही युद्ध स्तर पर काम करते हुए हॉर्मूज जल डमरू मध्य के वैकल्पिक रास्ते तलाशे और दुनिया भर के उत्पादकों से सीधा संपर्क बनाकर देश में खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद से विदेशी निर्भरता को कम करने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए ठोस नीतियां बनाई गई। पिछले 12 वर्षों में देश के भीतर 6 नए आधुनिक यूरिया प्लांट्स स्थापित किए गए हैं, जिससे हर साल उत्पादन में 76.2 लाख मीट्रिक टन की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में 25.4 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाले 2 और नए यूरिया प्लांट्स चालू होने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2014-15 में जहां देश का यूरिया उत्पादन केवल 225 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 314.7 लाख मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। साल 2024-25 में भी देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का मजबूत उत्पादन दर्ज किया है। फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का उत्पादन साल 2014-15 के 159.54 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 211.22 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां लगातार नए और अत्याधुनिक प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रही हैं। खाद उत्पादन और खपत के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। यूरिया और अन्य खादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निरंतर प्रयास किए गए हैं, जिससे भारत खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर सका है। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में 6 नई बड़ी यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनसे उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। यूरिया के अलावा डीएपी, एनपीके और एसएसपी जैसी

0: उत्पादों का उत्पादन भी देश में रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है। भारत में पोटाश के ज्ञात प्राकृतिक भंडार लगभग ना के बराबर है और कच्चे माल की उपलब्धता के लिए देश काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए विदेशों में दीर्घकालिक समझौते किए गए हैं। आगामी खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। कृषि व किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2026 के लिए कुल 383.9 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले सरकार के पास मौजूदा वक्त में लगभग 195.79 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। आमतौर पर सिर्फ 33% स्टॉक बफर के रूप में रहता था, जहां आज भारत 51% से अधिक के अग्रिम भंडार के साथ मजबूत स्थिति में है। वैश्विक संकट के बाद भी देश का घरेलू उत्पादन 118.15 लाख मीट्रिक टन रहा। अगर इसमें आयात को भी जोड़ दिया जाए तो संकट के बाद से अब तक देश में खाद की कुल उपलब्धता में लगभग 153.79 लाख मीट्रिक टन की भारी बढ़ोतरी हुई है।
1: आकाशवाणी शिमला एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
5: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
6: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
7: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
5: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
8: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
5: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना ना था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं। वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
9: ओह शीतला,

0: शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
1: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
0: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
1: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
1: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
0: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
1: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश

0: बताओगी?
1: हाँ
0: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
1: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
2: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछ देती है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
1: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
0: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है, पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
0: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह जी श्याम, शीतला पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह जयंत पात्रीकर, मंगला ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: है सनम जिंदगी का बहाना।
1: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज़ है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
2: है ना? और दुगना होके मिलता है।
1: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
2: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल, लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियाँ या बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, उन्हें किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुँचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज़ हमारे

0: घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
1: या फिर
0: उनकी।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
0: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या
1: ये
0: कुछ काम
1: सचमुच
0: का कर
1: काम
0: रहे
1: कर रहे
0: हैं।
1: हैं।
0: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
1: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती हैं ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
0: एक गीत सुनना चाहिए,
1: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा, तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनके मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुँचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिख कर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है, कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
1: है। वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज

0: बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए, तो एक गाना सुन लेते
1: सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है ने हा,
0: हा, हा, हा, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए,
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपम्प वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबाल कर छान कर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाएं।
0: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताज़ी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबाल कर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मज़ा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी, ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी, इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री, गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूड़ी होती है ना, वो कड़क
1: रहती है। है जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में

0: हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं।
1: जी,
0: आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
1: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एक एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
1: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यह संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
0: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधु

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुनवाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को

0: धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
1: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
0: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
1: फास्टिंग हो गया है,
0: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की कोशिश, सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ,
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए, तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके।

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि अब क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था, 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग ही रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही ना,
1: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से यह पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी
1: वो
0: जी,
1: भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि

0: चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
1: आपका
0: तो,
1: कहने का तात्पर्य यह है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही।

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो हैं वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए।
2: अच्छा।
3: कि रोज हमें कोशिश करनी

0: शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा,
0: जी
1: तो ये
0: नहीं
1: विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है, तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है। नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है,
1: और
0: वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित
0: क्यों
1: नहीं
0: विचलित
1: करेंगी।
0: करेंगी नहीं आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है। और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती
0: जी
1: हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए।
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा
0: जी
1: हो।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
0: उठे सबके

0: से गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तेरे दम पम पम।
1: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं, वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है, तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद, जैसे अब हम वहाँ पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आँख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है, या किसी वाहन की आवाज आ रही है, या पंखे की आवाज आ रही है, या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको, आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए

0: 20 मिनट का या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा
1: और फिर तो से अपना काम करें।
0: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है। आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
1: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है। और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
0: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं, जो तुम

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जिसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी।
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा
3: आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 MHz पर शाम के 5 को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
5: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
4: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
4: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से

गणपति वंदना के बाद आइए हम सब प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और भय को दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे जीवन को सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें।

भगवान शिव त्याग, प्रेम और सरलता के प्रतीक हैं। वे हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। शिव की भक्ति हमें नकारात्मकता से दूर होकर सत्य, संयम और सद्भाव का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है।

गैर फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक कर्म भूमि है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा, प्रेम और विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। जब मन में श्रद्धा और हृदय में भक्ति हो, तब हर कठिनाई आसान हो जाती है।

अभी आप सुन रहे थे गीतांजलि राय का गाया ये बहुत ही प्यारा सा भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 और 30 सेकंड हुए हैं, तो समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

युवा मंच कार्यक्रम में स्वागत है हमारे तमाम श्रोताओं का और हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, आज है सोमवार और अपने नए सेगमेंट नई उड़ान लेकर हम फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में। जी हाँ, ऐसे में हम बहुत आभारी होते हैं अपने युवा दोस्तों और बाकी श्रोताओं के लिए जो अपना कीमती समय निकालकर जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें जानकारियों के साथ साथ होता है संगम मनोरंजन का भी। जी हाँ, युवा दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी राहें कठिन हैं, सपने बहुत बड़े हैं और मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर संघर्ष हमें एक नई उड़ान भरने का अवसर देता है। नई उड़ान, जी हाँ, केवल सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि अपने सपनों को पहचानना, खुद पर विश्वास करना और हर चुनौती का डटकर सामना करना। एक पक्षी भी तब तक उड़ना नहीं सीख पाता जब तक वह अपने घोंसले से बाहर निकलने का साहस नहीं करता। ठीक उसी तरह हमें भी अपने डर और असफलताओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होता है। आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। विज्ञान, खेल, शिक्षा, कला, तकनीक और उद्यमिता जैसे हर क्षेत्र में हमारे युवा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उनकी सफलता हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर सपना साकार किया जा सकता है।

0: तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं अक्षय, जो हिंदी भाषा में मास्टर्स कर रहे हैं। आज के इस युवा मंच कार्यक्रम में, आज के सेगमेंट में हमारा साथ देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं युवा प्रतिभा अक्षय का। अक्षय, हार्दिक स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जी, तो बताइए कि आज के युवा का अपना ही एक इंटरेस्ट होता है कि कौन से फील्ड में वो 100% अपना दे सकते हैं। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको अपना करियर चूज करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है अक्षय?
1: सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी केंद्र धर्मशाला का धन्यवाद करता हूँ, जो आकाशवाणी केंद्र धर्मशाला ने मुझे अपने विचार अभिव्यक्ति का मौका दिया। और बात करें एक बच्चे के करियर को लेकर कि उसको अपने जीवन में जो है वो कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, तो प्रत्येक परिजनों का, अभिभावकों का यह कर्तव्य रहता है कि बच्चे को उसी क्षेत्र में हमें भेजना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ताकि वो चीज़ उसे फिर एक बोझ न लगकर

0: एक खेल की भांति लगती है और वो आसानी से उन चीज़ों को कर पाता है और अपने जीवन को एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने का वो प्रयास करता है।
1: जी, बहुत सही कहा आपने। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नई उड़ान की शुरुआत करते हैं तो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत होती है। यदि आपके भीतर कोई प्रतिभा है तो उसे पहचानिए, उसे निखारिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए, है ना अक्षय? तो चलिए, बातें तो हमारी होती ही रहेंगी पर मनोरंजन करना हम कैसे भूल सकते हैं अपने युवा दोस्तों का। तो सुनवाते हैं उनको एक म्यूजिकल ट्रैक।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 399 per month. Also, get amazing benefits up to Rs. 50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 399 per month. Also, get amazing benefits up to Rs. 50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
6: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
5: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
6: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
5: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
6: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का, युवा दोस्तों का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में, जो आज का सेगमेंट है नई उड़ान। जी हाँ युवा दोस्तों, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। यह कथन जो है वो हमें प्रेरित करता है कि यदि हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। क्यों अक्षय, क्या कहना चाहते हैं आप इस कथन के बारे में?
1: जी मैं, क्योंकि एक बहुत अच्छे शायर की पंक्तियां हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन चलना तो हमें स्वयं होगा और प्रत्येक उस परिस्थिति से जूझना होगा, तभी जो है हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो आप बताइए कि आपने हिंदी भाषा का, मतलब अपने करियर के लिए उसको चूज़ किया, तो आपका इंटरेस्ट पहले से ही था या कब से? मतलब
1: जी मैम, हिंदी हमारी जो है वो मातृभाषा है और बचपन से ही कहीं ना कहीं मैं हिंदी से अपना जुड़ाव समझता हूँ। अपने परिवार में भी मेरे पिताजी जो हैं एक शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ अभी

0: एक भूमिका के रूप में उन्होंने जो मुझे ये दिशा दी, निर्देश दिए और ऐसी शिक्षा दी जिससे मैंने अपने उस इंटरेस्ट को जो है एक पैशन के रूप में अपना पैशन बनाया उस चीज़ को, और आज हिंदी के साथ जुड़ा हूँ मैं और अपनी मास्टर्स हिंदी में कर रहा हूँ।
1: बहुत ही खूब, बहुत। कुछ ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखते हैं कि कौन से फील्ड में वो अपना 100% दे सकते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस फील्ड में जाएं और अच्छे से अच्छा करें। तो आगे आपका एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जाने का लगता है कि सोच रहे हैं आप, तो
0: जी जी मैम, मैं विशेष तौर पर मैं शिक्षक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो समाज को एक नई दिशा देता है, नई ऊर्जा देता है, और एक शिक्षक हमारे जीवन के जो वास्तविक शिल्पकार के रूप में होते हैं, जो हमें ज्ञान देने के साथ साथ नैतिक मूल्यों, सही सोच और आत्मविश्वास से परिपूर्ण करते हैं। वे एक बेहतर भविष्य और सशक्त समाज के निर्माण की नींव होते हैं, क्योंकि ज्ञान और समझ का प्रसार वो करते हैं और चरित्र निर्माण में एक अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक की दिशा समाज में उनकी वर्तमान स्थिति को और उनके चुनौतियों और कार्यप्रणाली से आधुनिक समय में जो एक शिक्षक है वो उसकी भूमिका बहुत विशेष हो जाती है। तो शिक्षक ही है जो समाज को एक मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है, गुरु आपको दिशा देगा, गति देगा और कहीं भटक रही होंगे तो संभाल लेगा, लेकिन चलना आपको स्वयं को होगा। तो इस संबंध में मुझे किसी विद्वान की पंक्तियां याद आ रही है कि किसी ने शिक्षक से पूछा होगा कि क्या है शिक्षक, शिक्षक शब्द क्या है। तो बड़े सुंदर और सरल शब्दों में शिक्षक का जवाब आता है कि शिक्षक वह है कि जो सुंदर सुर सजाने को साज बनाता है, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता है और चुपचाप सुनता है शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता है। और चाहे चांद पर बनाए कोई भी इमारत, लेकिन मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ, ऐसा है शिक्षक। तो यही है मेरा कि मैं भी अपनी भूमिका एक शिक्षक के रूप में देना चाहता हूं, ताकि समाज को एक नई दिशा दे सकूं और नई सोच दे सकूं।
1: क्या बात है अक्षय, बहुत खूब, बहुत ही खूब आपने ये बात कही हमारे युवा दोस्तों को कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको अपना फील्ड, अपना करियर जो है वो चूज़ करना चाहिए, उसी में वो अपना 100% जो है वो दे सकते हैं। तो क्यों ना सुना जाए एक और प्यारा सा म्यूज़िकल ट्रैक।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी युवा दोस्तों। तो गातो अक्षय चलते चलते संक्षेप में हमारे युवा दोस्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
4: मैं अपने युवा साथियों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने सफ़र की हमें शुरुआत कर देनी चाहिए और अच्छे तरीके से, क्योंकि सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल अवश्य पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं।
3: जी हाँ, कहते हैं ना, हौसलों की उड़ान बाकी है, आसमान अभी बाकी है, गिरकर फिर संभलना सीखो क्योंकि तुम्हारी नई उड़ान अभी बाकी है। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। अब अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया और अक्षय को दीजिए अनुमति। युवा दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए सेगमेंट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित वरीले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। विषय रहेगा खुम्ब उत्पादन हेतु प्रशिक्षण, साथ ही होगी भेंट वार्ता, मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। शाम 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां। शाम 7:10 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जो आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। विषय रहेगा विदेश नीति। रात्रि 8:00 विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा संगीतकार सोहेल सेन के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर गूंज पहाड़ों की ये लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:00 से 11:00 तक सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
1: चिट्टा को हम जन से हो जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। इसका पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर एसपी एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जनसेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में किन्नौर जिले के जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3,744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया है। वे आज सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के सायरी घाट में विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव, ज्ञान व जीवन मूल्यों से समाज को मार्गदर्शन मिलता है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
2: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश

0: आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
8: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहना जो केसरो दी दो जोड़ी करी राम राम। किसान साथियों दिखा खेती बाड़ी कार्यक्रम लेकर यहाँ ट्याले पर हाजिर हुई कने तुम सोचने की आज मिंजो कने कौन होगा तो जरूर थोड़ा परिचय करवाना दिन कने तो आज मिंजो आंदे आंदे पंच जी मिलने कने मेले पंच जी चला आज फ्री थे ट्याले पर बैठ दें गपशप भी मार दें जानकारियाँ भी साझा कर दें तो भाई पंच जी तो भी राम राम
1: राम राम केसरो जी कने कार्यक्रम सुना कर दे सारे स्रोतियाँ जो भी पंच की तरफ ते राम राम कने दिखा केसरो जी आज बड़े दिन बाद जड़ी से मुलाकात हुई है ट्याले पर और दसा तो हाँ अजकल जड़े से अपने लाड़ियों सुगाड़ियों अच क्या क्या अजकल लगाया क्या काम कार तो हाँ
0: दिखा अजकल जेड़े पिछे जी थोड़ा देर मौसम खरा था तब भाई अजकल फलियां भी लगाई ली हैं कने मक्की भी कुथी कुथी अहाँ बीजी ले थोड़ी बहुत कद्दू दे बीज भी लगाई ले ना हूँ कद्दू होने का जरूर तो अंजो भी लेके आने ट्याले पर मैं ना जी कने ऐसी जी साग सब्जियां दा समय चलिया सह लगाए कने बिच थोड़ा बहुत घा भी निकली आया तो तीसरा जी भी थोड़ी जी गुड़ाई वगैरह करी ली है करे बरखा भी मेहरबान है बरखा होंगी रहेंगी तो बोलते ना फसल जी थोड़ी देर खरी उसरी पौंदी है ना जी तो यह सब काम जड़े न पंच जी अजकल खेती बाड़ी के चले हुए कने दिखा दूई गल क्या कि हूँ बड़ी फसल की तैयारी भी लोग करा करते हैं ना जी तो भाई किसान भाइयों दिखा खेती बाड़ी के काम जड़े से लगातार चली रहते हैं क्योंकि खेती बाड़ी के काम ऐसे हैं कि तुम सब्जियां लाई लिया कोई फलों की खेती कर लिया कोई मशरूम लाई लिया बड़ी सारे ऐसे काम होंगे जो कि किसानों के कभी खत्म नहीं होंगे कने दूसरी गल है कि पशु तो जो है किसान की रीढ़ की हड्डी है पशु भी अहाँ पालते हैं कने पशुओं का काम भी बड़ा रहता है कने ट्याले पर हूँ अज अहाँ आए हुए हैं कने जानकारियां जी इनसे लेके आए हुए हैं
1: जी जी तो जानकारी की गल अहाँ करनी अहाँ खुंभ उत्पादन के बारे दिखा किसान साथी खुंभ उत्पादन एक जो लाभदायक कम है और इस जो अहाँ कम जगह च जड़े से आसानी कन्ने करी सकते और एक अच्छी आय जड़े से प्राप्त करी सकते हैं इस विच अहाँ इन्हां दी खुंभ दी किस्म दी बारे च गल करिए तो सब तो पहले गल करनी है बटर मशरूम दे बारे च यह जड़ी है बटन मशरूम ठंडे क्षेत्र जड़ी से उगाई जाती है और हिमाचल प्रदेश दे लोकप्रिय सब ते लोकप्रिय जड़ी से मन्नी जाती मतलब खाने च भी और उगाने च भी है ना
0: जी बिल्कुल
1: दूजी किस्म है आइस्टर मशरूम ये जड़े इसे अपेक्षाकृत आसान होंगी उत्पादन करना और गेहूं दे धान दे भूसे पर जड़ी इसे आसानी कन्ने उगाई जा सकती है ना कन्ने ही एक और किस्म है मिल्की मशरूम ये जड़ी है गर्म क्षेत्र वास्ते जड़ी इसे उपयुक्त है यानी कि गर्म क्षेत्र च इस जो आसानी कन्ने उगाई करी यहाँ दे किसान भाई जड़े से अच्छा मुनाफा जड़े से कमाई सकते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल पंच जी कने तुम बिल्कुल ठीक गल करा कीती है कि मशरूम की गल जी इसे कीती है तो किसान साथियों दिखा मशरूम जिस जो कि हाँ अपनी देसी भाषा च खुंभ भी गलांदे ने इस च क्या प्रोटीन विटामिन कने खनिज तत्व जो है भरपूर मात्रा च पाए जाते हैं इन्हों की बढ़ती मांग के कारण किसान कने युवा जो है स्वरोजगार के रूप से इसकी खेती जो करा करते हैं और बहुत अच्छा जो मुनाफा इसे भी कमा करते हैं लेकिन किसान साथियों सफल मशरूम उत्पादन के वास्ते उचित प्रशिक्षण बड़ा ही जरूरी है प्रशिक्षण के दौरान किसान जो मशरूम की बड़ी सारिया प्रजातियां जिया कि तुम्हें भी दसियाँ इसके बारे च दसे जाता है खाद किएँ तैयार करनी है इसे भी दसे जाता है इसका बीज किएँ लगाते हैं तापमान जड़ा इसे कितना रखना है और नमी जड़ी इसे किएँ नियंत्रण करना है रोग प्रबंधन और इसके करने करने विपणन की जानकारी जड़ी इसे भी दी जाती है प्रशिक्षण प्राप्त करने ने उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है नुकसान घट होता है
1: जी तो केसरो जी ये तो थी जानकारी खुंभ उत्पादन की अहाँ के किसान भाई जड़े से अपने खेती बाड़ी के कन्ने कन्ने छोटे मोटे कम कार जड़े से करते रहते जिससे तेना जो अतिरिक्त आमदनी जड़ी से मिलती रहे है ना तो इस जानकारी के बाद अहाँ चलना लोक जानकारी की तरफ और सुनना एक प्यारा दे लोक भजन
0: बिल्कुल जी

0: किसान साथियों, इस प्यारे दे लोक भजन दे बाद हुण अहां जानकारी पासे बढ़ना है। कने पाजे दिखा तो जो पता है कि अहां टेमे टेमे पर जड़ी इन जानकारियां लेकर ही आंदे रहंदे ने, और ऐसे च एक जानकारी जड़ी है मैं भी लेके आई हो थी
1: जी।
0: शीला चौंक ते, कने नर्सरी दी फुलां दी खेती दे बारे च इन्होंने जानकारी लेके आई हुआ है। तो चलते हैं सुनते हैं क्या क्या तिना गलाया, कने कौन है कने कुथु थे, है ना जी।
1: जी
0: पर हाँ टाले के माध्यम ने तुह तक बहुत सारी जानकारियां पहुँचाते हैं। जानकारियां खेतीबाड़ी से संबंधित होंदियां और नर्सरियां से संबंधित होंदियां, सोगी पशु से संबंधित भी होंदियां। इसी जानकारियों अज जो है से जानकारी जी लेके आए हुए हैं, सह लेके आए हैं शीला चौंक ए के फ्लावर नर्सरी से। और इतों जोड़े नर्सरी चलाने वाले तिना अं गलबात करनी है, तो पहले तो पूछते हैं तिना तिना कने तिना का पता।
2: नाम बजिंदर सिंह, ए के फ्लावर नर्सरी शीला चौंक धर्मशाला
0: जी। बजिंदर सिंह जी दिखा तो हाँ बहुत अच्छी नर्सरी लगाई हो, दिखा मेरे सामने बहुत प्यारे प्यारे फूल जड़े ने इतों खिले हुए हैं। कने मुझे नहीं लगा था कि कोई भी रंग जड़ा है सह बचिया होगा इन फुलों च, सारे ही रंगों के फुल जड़े ने सह लगाए हैं तू। हाँ पहले तू हाँ अपने बारे दसा, तू हाँ ये नर्सरी कलू शुरू की, शुरू की?
2: मैं ये नर्सरी 2002 में, और आज है वो लगभग 24 साल हो गए।
0: 24 साल हो गई है
2: जी।
0: अच्छा, थोड़े तो दिमाग च की आया विजेंद्र जी कि मैं नर्सरी का काम शुरू करा?
2: मैं ये बेरोजगारी जो है ये कहीं ना कहीं तो ले ही जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ ये बोला था कि बेरोजगारी से तो हाँ ये काम जो है सोच ही ले।
2: हाँ जी सोच।
0: ठीक है, तो तू हाँ जलू काम शुरू किया है तो छोटे स्तर से शुरू किया होना था, आज तक 24 साल।
2: हाँ जी मैम, ये हमने बिल्कुल छोटे स्केल पे किया था स्टार्ट
0: जी,
2: और आज तो चलो जहाँ तक पहुँचे हैं
0: जी। जी अच्छा विजेंद्र जी, दिखा मैं कुछ दिखा दी थोड़े वाले जो छोटे हाइट के भी हैं पौधे, कने कुछ बड़ी हाइट के भी हैं, तो कुछ जो पौधे होंगे अंदर जो कमरे च भी लगी आते, कने कुछ जो से बाहर ही सरवाइव करते हैं, तो इन्होंने बारे में दसा कि क्या कौन कौन प्रजातियां
2: हैं? जो है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं
0: जी
2: वो अंदर भी लग जाते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, और कुछ फ्लावर वाले प्लांट जो हैं वो आउटडोर ही चलते हैं
0: जी। जी मुझे भी दसा कि ये जड़े तुहां फूल जड़े लगे हुए हैं नर्सरी च, ये पौधे तुहां बी ते शुरू किए हो कि भाई पौधा ही तुहां ले करी आंदे पीछे ते?
2: मैम कुछ तो हम सीड से ही करते हैं तैयार, अपने बीजां दे करदे तैयार
0: जी,
2: कने कुछ जड़े पौधे न
0: सहां
2: जो कलकत्ता बेंगलोर पुणे ते भी मंगाना पौंदे
0: जी,
2: क्योंकि इनडोर प्लांट्स जो हैं वो यहाँ तैयार नहीं होते।
0: अच्छा जी,
2: तैयार नहीं होते
0: जी। जी कहने तो हाँ ये दसा कि थोड़े ना जी फुलों की मांग ऐसे कितनी करी, कितनी की रोज़ थोड़ी इतों जी बिक्री हो जाती, कितने की लोग इतों फुलों जो लेके जाते?
2: मैम इतना है कि 24 साल से यहीं गुजारा कर रहे हैं
0: जी,
2: और थोड़े ज़्यादा बिकते ही रहते हैं
0: जी। जी जी अच्छा, कहने दिखा ये बहुत बड़ी नर्सरी है, तो तुम इकल्ले तो तुम संभाल नहीं सकते, उन्हें तुम जरूर काम वास्ते लोग भी रखे हो?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ दो जो लड़के हैं वो रखे हुए हैं
0: जी
2: इस काम के लिए
0: जी,
2: जो वो ही करते हैं।
0: अच्छा, सो विजेंद्र जी ये दसा कि तुम इन फुलों से क्या कोई खाद भी पाते हैं, क्या तुम इसकी तैयारी किए करते हैं?
2: मैम इसकी तो पहले तैयारी करते हैं हम, पहले मिट्टी मंगाते हैं
0: जी, या
2: मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें गोबर की खाद डालते हैं
0: जी,
2: और फिर उसको गोबर की खाद डालने के बाद उसको एक दो दिन के लिए रेस्ट दे देते हैं,
0: मतलब
2: तिशियो मिट्टी डकीन दे। हाँ
0: जी,
2: जिस ते दो त्रै दिन तिस च मॉइस्चर वो बनी है अपने आप।
0: अच्छा, कने
2: खाद मिक्स हो गया
0: बिल्कुल,
2: तिस ते बाद जड़ी है सहा स लफाफियां च कने गमलियां च भराई कर दे, कने भराई करने ते बाद जड़ा है हां तिस च छोटे छोटे बूटे लगांदे
0: जी। अच्छा विजेंद्र जी, दिखा कई लोग बोलते हैं हाँ फुल लगाते, पर कई बार हाँ फुल दिन पानी पुनी भी दिंदे, पर सर ना जल्दी ग्रोथ नहीं पकड़ते या तिना च फुल नहीं आते, इसका क्या कारण होंगे?
2: मैं कोई कारण नहीं, ज़्यादा जो फूल हैं वो ज़्यादा पानी से ही ख़राब होते हैं
0: जी,
2: उनको पानी कम दें और उनको थोड़ा धूप में रखें
0: जी। जो इंडोर प्लांट्स हैं ना जो बाहर धूप रखना पौंदा
2: कभी कभी? उनको अंदर पर उनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है
0: जी,
2: थोड़े बड़े प्लांट होते हैं वो और पानी की कम ज़रूरत होती है उनमें।
0: कितने के दिन का गैप?
2: हफ्ते में दो या तीन बार जो अंदर रखे होते
0: जी, जेडे अंदर हुंदे दिना च हफ्ते च या दो या
2: दो या तीन बार।
0: ने पानी देने दा समय भी कोई होना चाहिए जी, सवेरे दईए या संझे दईए?
2: ऐसा तो वैसे तो जो घरों में रखे हुए हैं उनको तो सुबह या शाम ही देना चाहिए।
0: हाँ जी,
2: पर हमारे पास वो इतनी नर्सरी है कि हमें तो दिन लग ही जाता है पानी देने।
0: अच्छा, कौन कौन दी किस्मा तो हम जो दस सकते, कौन कौन दी किस्मा इस टाइम तो लगाई है?
2: हाँ जी मैम, इस टाइम हमारे पास होगा जीनिया होगा
0: जी,
2: कलोसिया होगा, सलोसिया होगा, फिर होगा बिनका रोजा होगा, सदा सुहागन
0: जी,
2: फिर ट्रोनिया होगा, बटन फ्लावर होगा, पोर्चुलाका है, कोयलिस है, ये
0: जी,
2: सीजनल वराइटियाँ तो हमारे पास इस और भी हैं
0: जी जी
2: रुडबेकिया है, जैसे गुलाडिया है,
0: जी
2: गजेनिया है, पटूनिया है।
0: जी
2: हाँ जी।
0: अच्छा विजेंद्र जी, गल दसा तुम कि जी घर यहाँ फूल लगाते कई पत्ते वाले फूल जड़े आ रहे जो मैं दिखा दी है तीन के पत्ते जड़ी आते, इसका क्या कारण होंगे? पीले पई आते करें फिर जड़ी आते?
2: मैं या थोड़े पत्ते तो सर्दियों में फ़र्क पड़ता है,
0: जी
2: फिर पत्ते आ भी जाते हैं उसमें,
0: जी
2: पर
0: जी
2: पत्ते झड़ते ज़्यादा पानी से हैं, जिसमें दलदल खड़ी इकट्ठी हो जाएगी ज़्यादा पानी से, उसके पत्ते झड़ेगी, अदरवाइज नहीं झड़ेगी।
0: अच्छा, तू ये काम जोड़ा इतने साल तक करा है, तू कल करा है कि थोड़े परिवार के और सदस्य भी?
2: मेरे परिवार के और सदस्य भी जुड़े हैं
0: जी।
2: हाँ जी।
0: अच्छा, और ये थोड़ा खेतीबाड़ी का नर्सरी का काम है, इस तू हम जो दसा कि अजकल के जो युवा वर्ग है सह भी क्या इस काम जो अगर शुरू करना चाहते हैं तो करी सकते हैं, क्या इस फायदा है?
2: बिल्कुल, इस काम जो करी सकते हैं जो अजकल के युवा ना
0: जी,
2: पर करी सही सकते जेडे इस साइड च अपना योगदान देंदे,
0: योगदान ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा
2: टाइम ज़्यादा चाहिए, कि ये नहीं है कि हाँ दूसरे पर निर्भर होगी इस कम में करना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ फूल जड़े नहीं ना कलम करने भी तैयार होंगे, जी मान लिया तो वहाँ से कोई लेके गया है तीस दे फूल की कलम भी लगाई सकते या तीस दे बी भी निकलते होने तीस चो भी हाँ तैयार करी सकते?
2: हाँ जी मैम, 80% पौधे होते हैं वो कटिंग से ही तैयार होते हैं।
0: अच्छा जी। और खाद जी तुम दसी गोबर की खाद पाते, इसके अलावा भी तुम कोई खाद?
2: इसके अलावा हाँ, जो गेहूँ में खाद डालते हैं
0: जी
2: 12-32-16
0: जी,
2: वो उपयोग में ला सकते हैं।
0: विजेंद्र जी दिखा तुम कहीं गलबात करा दे, और थोड़ी नर्सरी से होर भी बड़े सारे लोग जड़े से फूल लेना आए हो, तो एक इतू संजवल खड़ोते हैं इन्हें तो गल करते हैं, तुम ना दसा अपना?
1: मेरा नाम जी इंद्रपाल सिंह है, रिटायर्ड है, सीनियर सिटीजन है।
0: अच्छा जी, मुझे लगा तुम जो फूलों ने बड़ा प्यार है, तुम बड़ी देर दे तो फूल दिखा रहे?
1: हाँ जी, फूल बिल्कुल जी बड़ा प्यार है, दो तीन बारी असं इतों आए ना, कने अगे भी आना ओले ओले, जिया जिया मतलब जानकारी मिलती जानी, रिटायर बंदे क्या करना, थोड़ी जी दी फुलां प्रति झुकाव होगा तो अच्छा लगता, घर च अच्छा लगा, फुलवाड़ी बनी है दी, वातावरण शुद्ध हो जाता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: फुलां कने तुम दिल लगाई रखते मतलब
1: बिल्कुल जी।
0: अच्छा
1: हाँ जी, अच्छा टाइम जी, सुबह सवेरे सुबह शाम तुसी पानी दियो, उन्हें देख।

0: पाल करो, पत्ता
1: जी
0: जड़ा खराब हो दी कटिंग कर दियो,
1: जी
0: बाकी खाद वगैरह दियो।
1: खाद तो हाँ
0: अच्छा
1: कुंडे ही यूज कर दे घरे बिजली
0: खाद
1: पानी होए तो
0: नहीं, खाद जड़ी है असी था गोबर दी
1: गोबर दी।
0: जड़ी है खाद असी वो ही यूज कर दे, और केमिकल कोई नहीं। बाकी
1: अच्छा
0: अगर कीड़ा वगैरह लगा तो किसी ने सुजेस्ट किया कि हल्दी लेनी
1: जी
0: वो पंप च पाई के घोली की
1: जी
0: वो उदा स्प्रे कर देना, या गाय
1: अच्छा
0: का मूत्र,
1: जी
0: बाकी
1: जी
0: केमिकल और कोई नहीं यूज
1: जी
0: करते
1: जी
0: जी।
1: बाकी तो जो इस नर्सरी चाय करे भी जानकारी मिलती रहती होनी है क्या
0: बिल्कुल
1: क्या
0: जी,
1: करना है।
0: बड़े जानकारी मिलती है।
1: जी
0: बाकी
1: इंद्रपाल जी तुम्हें दसा कि तुम फूल तो लगाए लगाए न करे और भी क्या कितने तुम कोई खेती बाड़ी का भी
0: नहीं
1: इंटरेस्ट रखते।
0: खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी इतों हूँ धर्मशाला चाहिए कि 10 मरले जगह
1: हाँ
0: लेनी,
1: जी हाँ जी
0: तत्ती दे विच खेती क्या करनी जा मकान क्या पाना,
1: जी
0: पर
1: जी
0: यह है कि मतलब काफी 200-250 गमला है
1: अच्छा 150-200 गमला
0: तो
1: लगाया जी
0: है
1: फिर
0: बिल्कुल इतना है
1: बिल्कुल
0: पानी दिंदे भी उदे, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं 15-20 मिनट तो लगी इन पानी दिंदे सारे की, तो काफी
1: बिल्कुल
0: टाइम
1: जी
0: लगी जाता
1: बिल्कुल
0: जी। हाँ जी
1: बिल्कुल बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा लगे तुम कहने गलबात करके कि तुम रिटायर होने के बाद दिखा फूलों कहने दिल लगाया और फूलों जो तुम अपने घर च लगाते थोड़े घरे 100 बंदे आते होंगे तो सभी बोलते होने कि बड़ा अच्छा लगा
0: हाँ
1: यार
0: जी
1: देखी
0: बिल्कुल
1: के।
0: जी, जेड़ा लंघदा जंदा गली है ते हाँ जी कुथु ते ले बड़े अच्छे लगा दे, असी भी कोशिश करके इस तरीके चले है बस।
1: अच्छा जेना जी ना जो फूल लाते बड़ा प्यार है या फूल लगाना चाहते थे ना जो जाते जाते तुम एक संदेश दे के जा
0: देखो जी जितनी ग्रीनिंग तुहाड़े घरे च होगी, फुल
1: जी
0: लगे, पेड़ जड़े छोटे छोटे प्लांट लगे,
1: जी
0: उतना तुहाड़े घर का वातावरण जरा शुद्ध होना,
1: बिल्कुल
0: फर्स्ट क्लास होना, कोई बीमारी नहीं होनी।
1: जी
0: कने शामी वेले कुर्सी लगा, कने बरांडे बैठी जा, अखे बखे फुल होने, थोड़े प्लांट होने, तो
1: जी
0: तुहानू सांस लेने च भी अच्छा लगना।
1: बिल्कुल जी बहुत अच्छी गल तुह गलाई है कने साढ़े किसान भाइयों ने सुनी होनी कने जरूर इन्हों का भी रुझान जड़ा से फुला प्रति होया होना है। धन्यवाद जी।
0: थैंक यू।
1: किसान साथियों दिखा इस नर्सरी च जेड़ा इनसे एक आंटी भी मिले मिंजू जेड़े कि इतों काम कर दे कने सोगी ना दिल भी लगे अगर मैं पूछती जरा करी इन्हों कि क्या कमा देना। हाँ जी तुह अपना नाँ दसा
2: मेरा नाम जी कृष्णा।
1: जी कृष्णा जी
2: हाँ
1: तुह इस
2: जी
1: नर्सरी च काम कर दे क्या क्या कर दे तुह इतों।
2: बस ये है घास वगैरह निकाली देना,
1: जी
2: कुथी खाद कम है खाद दे देनी,
1: अच्छा
2: पौधा
1: जी
2: कुथी खराब हुआ था
1: हाँ
2: उसी में दोबारा फिर ही लगाई देना
1: कने ए जी
2: उखाड़
1: तुहां
2: के।
1: ए प्लास्टिक दे लिफाफे च लाया ना
2: हाँ जी
1: हुणे तुहां बाद च बदलना कर लूए गमले च कर लू पाना।
2: हाँ जी गमले च पाना, इसकी फ्लावरिंग आई जानी फिर ये दिखना पौधा खरा हुई है इस गमले च पाने
1: अच्छा
2: वाला, फिर यहाँ गमले च
1: पाए
2: चेंज
1: देंदे
2: कर देना।
1: फिर तुहां इस खाद क्या पांदे
2: खाद है गोबर दी खाद।
1: गोबर दी खाद
2: हाँ
1: इत्थों रखी
2: जी
1: होंदी तुहां।
2: हाँ जी अमोल लैन देना।
1: अच्छा
2: हाँ
1: कने ए
2: जी
1: ट्रे जे रखी है ट्रे कुछ वास्ते होनी है।
2: ट्रे होंदे इस च होंदे छोटे छोटे पौध होंदी।
1: अच्छा
2: बाहर
1: बाहर
2: तो
1: ते होंदे।
2: पौध हाँ जी बाहर तो पौध होंदी, फिर
1: अच्छा
2: यहाँ चेंज करने ना बैगा च
1: बैगा च
2: बट्टे
1: पाना।
2: च।
1: अच्छा फिर
2: हाँ जी
1: बैगा
2: हाँ
1: दे
2: जी
1: बाद
2: बैगा दे बाद हाँ गमले च चेंज
1: गमले
2: कर
1: च
2: देना,
1: पाना।
2: जरा सेल हो जानी से कर देनी फिर बैगा आनी गमले च
1: अच्छा
2: कर
1: अच्छा कने तू
2: बस
1: आए
2: इतना
1: तू जी
2: ही
1: आए काम कर दे थोड़ा दिल लगी रहता जी काम
2: मन।
1: कुम
2: हाँ
1: करने च
2: जी
1: है
2: हाँ
1: ना।
2: जी मन लग रहा फूलों से बस,
1: हाँ जी
2: कुछ घास वगैरह निकाली देना,
1: जी
2: कुछ
1: जी
2: पौधे पानी देता,
1: जी जी
2: फिर कस्टमर आते होने यो पौधे
1: अच्छा
2: दिया कौन पौधा लेना
1: तो
2: क्या
1: तुम जो भी
2: पौधे।
1: उन्हें तू काम करते करते बड़ी जानकारी हुई होनी
2: जी जी
1: कि
2: जी
1: है ना
2: जी हाँ हाँ
1: फूलों की रखवाली की है
2: हाँ
1: कर दे
2: जी
1: क्या
2: हाँ
1: नहीं है ना।
2: जी
1: अच्छा जी तो ये दसा कि भाई तुह भी अपने घरे जी कुछ कुछ फूल लगाए होने।
2: जी जी हाँ लगाए
1: अच्छा
2: दी पौधे
1: हाँ जी
2: घरे भी होंगे लगाइए पौधे उन्होंने भी क्या घरे तो इतनी रखवाली कम ही होंगी,
1: हाँ जी
2: सवेरे और शामी को पानी दे हड़िया बस
1: गुड़ाई वगैरह भी करना
2: गुडाई
1: पड़ी
2: कर
1: ना
2: दे।
1: काम
2: हाँ जी
1: को
2: गुडाई
1: करना पे।
2: वगैरह तो करना पड़ी
1: अच्छा
2: ना,
1: अच्छा
2: गुडाई नहीं की तो पौधे नहीं चलना।
1: नहीं चलना। अच्छा जी कोई पौधे जी पीले पत्ते पई जाने तो क्या करना चाहिए तीनों कट देना चाहिए भाई।
2: से पत्ता तोड़ी देना
1: हाँ जी
2: फिर दवाई होंगी दवाई की छिड़काव कर देनी,
1: अच्छा
2: फिर उस तरह कीड़ा मकोड़ा जो भी है से पत्ते दे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: हाँ
1: अच्छा कृष्णा जी बहुत अच्छी जानकारी तुम दी है और ऐसे ही कम्मा च मन लगाई रखना चाहिए है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी बस मन भी लगी रहता
1: जी
2: घरे का ये घर से चले आए पौधे से आई के मन लगी रहता कुछ क्या कम करीता
1: जी
2: ये है।
1: बिल्कुल जी
2: हाँ
1: बिल्कुल
2: जी हाँ जी
1: जी जी विजेंद्र जी दसा कि तुम जी जी नर्सरी चलाई हो तो तुम जो सरकार की तरफ से कोई योगदान या कोई योजना है जिसका तुम फायदा लिया देना।
3: मैं अज तक तो कोई फायदा नहीं लिया
1: जी
3: पर मैं हूँ सोचा था कि सरकार ने या हॉर्टिकल्चर वालों से के साथ बात करके उनकी जो स्कीम्स होंगी उनका फायदा लिया जाए।
1: बिल्कुल और विजेंद्र जी चलते चलते बस तुम्हें दसा कि आजकल का जो युवा है अगर इस काम में जो करना चाहता होगा तो तुम क्या तीन सलाह देंगे।
3: मैं तो ये बोलना चाहता कि जेडे अजकल दे युवा न पढ़े लिखे न सब भी अपने रुजगार करने ताई इस काम जो जरूर करन, मेहनत तो लगती है पर काम

0: किसान साथियों तो इस लोकगीत कने ही कार्यक्रम खेती बाड़ी के समय इतों संपन्न हुआ है। जानते जाने तुम्हें तो दस दिए कि अज कार्यक्रम च सांझू तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान होर का कार्यक्रम प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह और हम सांझू तुम्हें दिया अनुमति।
1: अच्छा जी, जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दी सुनने वाले सारे ही श्रोतें जो एक बारी फिर ते टियाले ते राम राम कने मेरे कने ने केसरो जी तुहांजो भी राम राम
1: राम राम जी राम राम पंच जी तुहांजो भी राम राम और जितने भी किसान भाई बहन सांजो कने जुड़े होए ना खेती बाड़ी दे काम काज करा कर देना और सोगी ही तीना टियाले दा कार्यक्रम भी सुना कर दे तीना जो फिर ते एक बारी राम राम
0: जी। ता केसरो जी दिखा आज फ्री दिन है जिड़ी से बड़ी अच्छी बारिश जिड़ी से हुई है ना
1: जी। एक दिन बरखा दूए दिन धूप फिर आज फिर ते बरखा आई है दिखा मौसम जड़ा से बदलो हुआ है खरा है चलू बड़ी गर्मी होंगी थोड़ी बरखा भी पई आती है
0: जी
1: कने मौसम भाई क्या बोली सकते रंग बदलता ही रहता है ता
0: बिल्कुल। और इस बारिश करने जड़े से हूँ साढ़े खेतर जड़ी से अच्छी नमी भी बनी गई और साढ़े जड़े उत्तर क्षेत्र न उत्तु जितु की पानी दी जड़ी समस्या रहती सिंचाई दे साधन नहीं
1: बिल्कुल
0: तितु जड़े से हूँ साढ़े किसान भाई जड़ी से मक्की दी बिजाई जड़ी से जोरा शोरा कने इन दिन च करा कर दे
1: तो हाँ बिल्कुल ठीक गल गलाई पंच जी दिखा जड़ा उपर बैठे है ना तीसी सब दा ध्यान हुंदा
0: जी।
1: जिन्हां वल तां कुल्ला हैं ट्यूबवैल हैं पानी है सतत करी लैंदे गुजारा पर जिन्हां वल भई सिर्फ एक बरखा दा ही एक माध्यम है बरखा पानी दा तां सह तां भई बरखा पर ही निर्भर है और बरखा थोड़ी दी होई है चलो अच्छा होई है सेड़ लगी है ना जी
0: जी जी और जिन्हें पहले लगाई थी फसल तेना वास्ते भी वधी है क्योंकि उन्हें फसल जल्द निकले आई है
1: जी
0: या तैयार हो ही थोड़ी थोड़ी तो इस बीच जड़ा से अच्छी बारिश जड़ी से वधी है। और हाँ यही चाहेंगे कि आने वाले समय बीच भी जड़ा से समय समय पर बारिश जड़ी से होंगी रहे
1: होंदी रहे
0: ना ज़्यादा हो ना घट हो मतलब सामान्य तौर पर होंगी रहे तो साड़ी फसल जड़ी से अच्छी होंगी है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल कन्ने दिखा पंज जी हूँ दिखा फिर ते हाँ टेले पर हाजिर होई होने कन्ने जेड़ा जानकारी है ना सब भी पुजाना बड़ा जरूरी है तो मुझे लगा था आज तो हाँ कोई जानकारी जड़ी से लेके आए होने
0: जी तो केसर जी आज हाँ गल करनी है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना कोष विकास के बारे में है ना जी।
1: जी
0: इस दा मुख्य उद्देश्य यही है कि साढ़े जड़े पशु न उन्हों दा जड़ा से रोग मुक्त रखना और तिना दे जड़े खासकर जड़े रोग ने जिए कि खुरपका मुँहपका रोग है या फिर ब्रुलोसिस ये इन्हें जे नियंत्रण वास्ते जड़ा से एक बड़ी विस्तृत योजना जड़ी साड़ी सरकार ने बनाई
1: बनाई
0: हुई है ना।
1: जी जी
0: और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्ष 2030 तक जड़ा से इसे पूरी तरह खत्म जड़ा से करी देना है यानी
1: बिल्कुल
0: कि एक संक्रमण संक्रामक रोग है मतलब एक ही पशु से दूजे पशु जो जड़ा से फैलता है और
1: बिल्कुल
0: उस जो अगर हाँ सामूहिक तौर पर निपटांगे ता ही जड़ा से इस रोग से मुक्त जड़ा से हाँ हो सकते नहीं यानी कि
1: बिल्कुल
0: अगर एक भी पशु जड़ा से इस रोग कने जड़ा से छुट्टी आंदा है ता फ्री ते जड़ा से इस रोग जो
1: संक्रमण होने
0: फैलने
1: दा
0: की संभावना जड़ी से
1: जी जी
0: बनी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ता हाँ यही चाहेंगे कि अहाँ दे किसान भाई भी जड़ा से इस कार्यक्रम बिच जड़ा से बड़ी चढ़ी करी भाग लेन और अहाँ दे जड़े पशु धन है तिना जो समय समय पर उन्हों का टीकाकरण जड़ा से करान जिससे कि ये जड़ी बीमारी खुरपका मुँहपका रोग और ब्रुसेलोसिस की बीमारी जड़ी है इन्हों से जो सारे पशुओं का बचाव जड़ा से हो सके है ना।
1: बिल्कुल पंच जी और दिखा मैं तुहानू दस दी कि भाई पिछले जड़ा मई महीना गया है ना
0: जी
1: इस महीने च सरकार दी तरफ तो जड़ा है इस वास्ते जड़ा टीकाकरण जड़ा अभियान एक चलिया हा
0: बिल्कुल
1: कने बड़े सारे पशु जड़े साढ़े पालक है ना तिना दे लाभ लिया है क्योंकि ये जड़ा इंजेक्शन थे सह घर घर जाकर जड़े इनसे पशु चिकित्सक जड़े ना से फ्री च लगा दे कने बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ लिया है कने जड़े रही हुए तिना जो हाँ ये गलाना चाहेंगे कि भी जरूर टीकाकरण समय पर कराई लेना चाहिए
0: जी। और साड़ी सरकार भी जड़ी से इस वास्ते बड़ी संवेदनशील है और हर एक 6 माह के अंतराल पर जड़ा से टीकाकरण साड़े सरकार जड़ी से करा करती और अहाँ जो भी जड़ा से सहयोग करना
1: देना
0: चाहिए
1: बिल्कुल
0: और इस वास्ते जड़ा से पशुओं की पहचान करने वास्ते कि कुसियो टीका लगी है कौन रही है इन सारी चीज़ा जो मॉनिटरिंग करने वास्ते जड़े से ईयर टैगिंग और पंजीकरण जड़ा से साढ़े पशुओं का हुआ करता जी कि अजकल हाँ अपने पशुओं देखते कन्न टोकन लगे होंगे सारे च ना तो उसका सारा रिकॉर्ड जड़ा सा साड़ा पशु विभाग रखा करता और इससे ये फायदा रहता कि कुछ पशुए जो जड़ा सा टीका लगी है कुछ जो नहीं
1: नहीं
0: लगे
1: लग
0: है
1: गया जी
0: और किस पशु जड़ा से कौन रोग जड़ा से फैले सारे रिकॉर्ड जड़ा सा पशु विभाग वाले होंगे तो इससे कि साढ़े संजो अपने पशुओं जो रोग मुक्त करने वास्ते जड़ा सा बड़ा फायदा रहता है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: और इसके कन्ने कन्ने जन जागरूकता अभियान भी जड़े से समय समय चलाए जाए करते और पशु स्वास्थ्य निगरानी और परीक्षण जड़ा से समय समय पर साड़ा विभाग जड़ा सा करा करता और टीकाकरण दे वास्ते जड़े से कोल्ड चेन यानी कि जड़े कुछ एक इंजेक्शन ऐसे होंगे कि जड़े ठंडे फ्रीजर च जड़े से लगाए जाते हैं।

0: ना, तो ये सारी व्यवस्था इस कार्यक्रम के तहत कीती जा करती है ना। इस दे
1: बिल्कुल
0: कने कने जलू प्रकोप की स्थिति होंगी, यानी कि ये इस तरह की कुछ बीमारियां फैलदी हैं, तो वायरस जो आइसोलेशन और नियंत्रण करने वास्ते जोड़ा से विभाग कार्यक्रम चला करता हो, यानी कि जो भी पशु अहाँ इस संक्रमण ने प्रभावित होंगे
1: प्रभावित
0: तिना जो जोड़ा से अलग कर दिते जाता और उन्हों का अलग जोड़ा से उपचार अलग तो किए जाता है।
1: जी जी
0: कन्ने कन्ने
1: बिल्कुल जी
0: टीकाकारां दे प्रतिफल देना और डेटा एंट्री, टीकाकरण जो खुराक वास्ते जिहड़ा से प्रशिक्षण देना, यानी कि इन पशुओं जो जिहड़ा से किस किस तरह दे खुराक देनी है, उन्हें जो कलू कलू टीका देना, ये सारी चीज़ें इस विच होंदियां ने।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल पंजी तुहां बहुत अच्छी जानकारी जिहड़ी इस कार्यक्रम के माध्यम ने दिती है साढ़े किसानों जो और मुझे लगता है इस जानकारी के बाद हुण सानूं अगे बढ़ना चाहिए है कने किसानों जो और सारे जो जिहड़ा लोक जानकार जरूर सुनाना चाहिए है। तो
0: जी
1: चलते हैं किसान भाइयों सुनते हैं एक प्यारा जिहा लोक गीत।

0: पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
6: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
7: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
8: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: किसान साथियों, दिखाई से लोग गीत के बाद, करें संदेशों के बाद, हूँ फिर यहाँ गलबात करनी है। और गलबात ये करनी है कि बरखा लिए कदी कदी हुआ कर दिए, थोड़ी थोड़ी हुआ कर दिए, पर हूँ बरसात होने वाली है ना पंच
10: जी।
9: कने ऐसे च जड़ा है कि गर्मी से बचने वास्ते बहुत सारे पर्यटक जड़े से इस पास इधर हिमाचल पास आते हैं। और अजकल खड्डा नाले च जड़ा है पानी जड़ा है सब एकदम बढ़ जाता है। तो ऐसे च हाँ ये बोलना चाहेंगे कि निक्याणे आने चाहे युवा आने चाहे कोई भी है, तो खड्डा पास तुह जाते हैं तो अपना खास ख्याल रखा। वैसे तो तुह हूँ जी बरसात होने वाली तो जा ही मत, क्योंकि बाहर तो जो आता तो पता नहीं होंगे पानी की गहराई कितनी है ना। तो जी पानी का बहाव पिछे तो आई है, कने कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई है, तो अपना खास ख्याल रखा।
10: बिल्कुल, और इसके बाद हाँ फिर तो चलना लोक जनकार की तरफ और सुनना एक और प्यारा दिया लोकगीत।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। टीएनसी अप्लाई।

0: जी तक संसाथी इसी प्यारे दे लोग गीत करने साड़े कार्यक्रम दसवें भी इस संपन्न होंदा पर जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग दिया अंकित दीवान और दा कने प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह और हुन अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कने केसरो जो दिया अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उजागरणियां, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों

0: ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट विट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Following the talks, both leaders signed 11 agreements to expand the bilateral cooperation. The agreements were inked in areas of labor migration, defense, digital technologies, higher education and quantum communication. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Modi said, "Elevation of relations to the status of a comprehensive

0: Partnership symbolizes shared beliefs, priorities, and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: Mr. Modi also conveyed his appreciation to Mr. Fico for the cooperation Slovakia extended in finalizing the India-EU Free Trade Agreement. In his remarks, PM Fico hailed India-EU FTA, describing it as one of the most ambitious trade pacts ever signed. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Prime Minister Narendra Modi will reach Avignon tomorrow to participate in the summit. The G7 summit under the French presidency has chosen some key priorities for the current year. These include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Modi said, India hopes that the implementation of this understanding will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. The government has said that the LNG carrier Disha, carrying 62,370 metric tons cargo, has safely transited the Strait of Hormuz. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the vessel is expected to reach Dahej port in Gujarat on Thursday. He said that the Directorate General of Shipping is closely monitoring the situation and is in continuous coordination with different stakeholders. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu said the airport will serve as a hub for both domestic and international operations. Railways has approved a 201 crore rupee Kavach project for the Ambala division of Northern Railway. Kavach is an indigenously developed automatic train protection system designed to enhance operational safety. Railways has also approved 140 crore rupee Kavach project for the Ahmedabad division in Gujarat. In a major boost to India's renewable energy sector, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today launched the Wind Turbine Supply Chain Management or WT Maruth portal during the Global Wind Day 2026 National Conference in Goa. Addressing the gathering, Mr. Joshi highlighted India's rapid growth in the wind energy sector. Ukrainian President Volodymyr Zelensky today said that Russia fired hundreds of drones and dozens of missiles at Kiev and Kharkiv cities last night that killed at least 11 people and set fire to a religious site. The attacks on capital Kiev and second largest city Kharkiv came after Zelensky and Russian President Putin held telephonic conversations separately with US President Donald Trump on Sunday. And in FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match in Mexico today. In another fixture, Spain will play against Cabo Verde in Group H clash at Atlanta tonight at 9:30. And that
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम विदेश नीति रिले किया जाएगा।
3: मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
4: धन्यवाद।
3: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
4: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
3: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
4: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। भी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
3: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
4: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं। और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
3: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
4: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें खास करके जमीन बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
3: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
4: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है,
3: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
4: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, एक डेढ़ लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत वन अमृत टू योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
4: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2,00,000 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना है हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
3: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
4: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
3: जी।
4: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना, यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75,00,000 लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
3: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है, एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
4: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिल करके कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में जी मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारा सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
3: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
4: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
3: जी।
4: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
3: जी,
4: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने

0: तो इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाया जाए, ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। इंटरव्यूअर इज अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट।
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction. From earlier, the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork,

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
5: चिट्टा को हम जन सहयोग, जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। इसका पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को, युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
4: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जनसेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में किन्नौर जिले के जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जन प्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। शपथ

0: देने के बाद चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगी की फिंडरू पंचायत के उप प्रधान देवी चरण वर्मा ने कहा कि सरकार के सहयोग से पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
1: देवी चरण वर्मा आज उप प्रधान के रूप में शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत फिंडरू के सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सरकार के सहयोग से हम अपनी पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे।
0: इस बीच पांगी घाटी के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने सरकार से पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में इन प्रतिनिधियों ने कहा कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से इलाके का समग्र विकास सहित जन समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। उन्होंने वर्ष भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए चेहणी पास सुरंग का जल्द निर्माण करने की मांग उठाई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। धर्मशाला में आज भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। कार्यशाला में केंद्रीय विधि व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों तक न्याय पहुंचाने में कॉमन सर्विस सेंटर और टेली लॉ जैसी पहलें अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में न्यायिक व विधिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से लोगों को अवगत करवाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
2: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
0: प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल भूकंप, बादल फटने और वनों में आग लगने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए करवाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान पिछले मॉक अभ्यासों में दिखाई गई प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, निकासी और राहत व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी की गई जिनमें भविष्य में और सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल 16 जून से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें प्रगणक HLO मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। निदेशालय ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। ऊना जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास और सौंदर्यकरण कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंदिर की विकास और विस्तारीकरण परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद बताया कि ये निर्माण कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरा कर तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
5: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
4: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है।
5: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
4: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
5: नियम और शर्तें लागू।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला की विशेष प्रस्तुति में अब आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास की यात्रा। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर व सामाजिक कार्यकर्ता अजय श्रीवास्तव जी, और इनसे चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुन सकते हैं।
8: आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार ने 26 मई 2014 से देश की बागडोर संभाली और अब 12 वर्षों का लंबा सफर तय कर लिया है। इन 12 वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में बदलाव और विकास के नए आयाम देखे। इस कालखंड में भारत की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण दौर रहा। इन वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। गरीबी, बेरोजगारी, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास जैसे अभियान जमीन पर उतरे और कई योजनाएं आम लोगों तक पहुंची। इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास की यात्रा। आकाशवाणी के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस परिचर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे

0: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 12 वर्षों में देश की तस्वीर कैसे बदली, गरीब युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ नया किया गया और आने वाले समय में देश को विकसित बनाने की दिशा में क्या संकल्प लिए गए। तो प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद उज्जवल शर्मा जी, और आकाशवाणी शिमला का भी धन्यवाद जो इतने महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर आज का कार्यक्रम रखा है।
0: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों को एक समग्र रूप में किस नजरिए से देखते हैं।
1: देखिए, एक पत्रकार की दृष्टि से मैं पिछले लगभग 4 दशक से भी अधिक समय से हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति विकास यात्रा को देख रहा हूं। मैंने राजीव गांधी जी का समय भी देखा, उसके बाद की सरकारें भी देखी, और पिछले 12 वर्षों से जो अभी एनडीए की सरकार है इसको भी देख रहा हूं।
0: जी,
1: विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, समग्र विकास की दृष्टि से, तो इस समय हमने देखा कि जो भी कुछ यहां परिवर्तन हुआ है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले किसी भी सरकार में 12 वर्षों में या 10 वर्षों के दौरान इतना मेजरेबल, जो हम कह सकते हैं जिसको मापा जा सकता है, उतना परिवर्तन, और वो सकारात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन, वो पिछले 40-50 साल में मैंने स्वयं में नहीं देखा। तो इसलिए कोई देश में कोई भी विषय है या कोई भी वर्ग है, वो एक नारी, महिला, बेटियों से लेकर के हमारी सुरक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा तक, हमारी विदेश नीति तक, हमारी ऊर्जा क्षेत्र में इतना परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया पहले कभी भी।
0: जी, यानी कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की काम करने की शैली और योजनाओं में कई बदलाव देखे गए हैं।
1: बिल्कुल, बुनियादी बदलाव। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और उसके कुछ ही समय बाद जो एक योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस किया नीति आयोग से, तो नीति आयोग के काम करने का ढंग प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग से बिल्कुल फर्क है। ये भारत का सर्वोच्च थिंक टैंक है और ये ग्रास रूट लेवल से इनपुट लेकर के योजनाएं बनाता है। पहले होता था कि योजनाएं दिल्ली में, केंद्र में बनाई जाती थी और नीचे तक उनको थोपा जाता था। अब यह है कि योजनाओं का इनपुट नीचे से आता है, उनकी आवश्यकताएं नीचे से, पंचायत स्तर से उसकी शुरुआत होती है और फिर वो योजना ऊपर जाकर के बनती है। तो ये एक बुनियादी अंतर है। इसलिए हमें विकास की गति और उसके माप में भी बिल्कुल बुनियादी अंतर दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, विकास के कामों में इन 12 वर्षों में तेजी आई है और कई नई नीतियां बनी हैं जिससे देश के कामकाज के तरीकों में बदलाव महसूस किया गया है। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं, इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं?
1: ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, कारनामा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसमें इतने प्रकार के मत संप्रदाय, इतने प्रकार की भाषाएं, इतनी जनजातियां, जातियां, और राजनीतिक स्तर इतना गिरावट की ओर जा रहा है, ऐसे में विशाल जनमत के साथ देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में जहां कहीं पर भी लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यानी सत्ता पर काबिज रहे, उनके देशों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो देश लोकतांत्रिक देश आमतौर पर नहीं होते हैं। या तो वहां एक पार्टी की सरकार होती है, जैसे चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी है, या फिर वहां तानाशाही होती है। इतने 140 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले देश में लगातार इतने लंबे समय तक, नेहरू जी का हम नाम लेते हैं कि अभी तक वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी जी ने उनसे भी आगे निकल करके एक कीर्तिमान बनाया है। इसीलिए विश्व के जितने प्रमुख नेता हैं, सबकी ओर से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को और जनता के लिए बधाई संदेश आए हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है।
0: जी अजय श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की और इनका असर कितना हुआ?
1: देखिए, मैंने वो समय भी देखा है, हम सभी ने देखा है, जब गरीबी हटाओ का नारा हर चुनाव में दिया जाता था और गरीबी हटाने पर फोकस

0: कभी भी नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर लोगों की गरीबी हट गई उस समय सोचा जाता था तो फिर वो सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे, डिमांड करेंगे, और वो नियत सरकार की नहीं होती थी, वो मंशा नहीं होती थी। मोदी सरकार ने जिस प्रकार से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भारत में कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जैसे महिलाओं को समाज में समान भागीदारी देना, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है और आमतौर पर चाहे वो समाज का अंतिम वर्ग है और चाहे वो उच्चतम वर्ग है, महिलाएं अगर कार्य नहीं करती हैं, कार्य करती हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो परिवार को संबल नहीं देती हैं, तो परिवार ठीक ढंग से नहीं चल पाता है, और ये हो रहा है, चाहे वो कोई श्रमिक है और चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, सब जगह महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन जो श्रमिक है उस लेवल पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, विभिन्न प्रकार के उनको काम सिखाए गए और उनकी स्किल में सुधार किया गया। अब जैसे हम देखते हैं बिल्कुल नया आइडिया था ड्रोन दीदी का, महिलाएं गांव में ड्रोन चलाती हैं और वो खेती में सहयोग करती हैं। इसी प्रकार से मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, किसानों के लिए MSP बढ़ी, उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए डाले गए ताकि वो अपनी खेती का काम सुचारू ढंग से जो है संचालित कर सके। और इसी प्रकार से कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जो कि समाज का सबसे अंतिम वर्ग हो और उसके लिए सशक्तिकरण का काम ना हुआ हो। यही वजह है कि पिछले 10-12 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया और गरीबी रेखा से वो बाहर आने में सफल हुए।
1: अजय श्रीवास्तव जी, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया, इसी में हमने देखा है कि उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इन योजनाओं से आप कितना बदलाव महिलाओं के सामाजिक स्तर में देखते हैं?
0: ये बदलाव मापा जा रहा है, इस पे बहुत से संस्थान और यूनिवर्सिटीज शोध कर रही हैं कि ये बदलाव आया तो कैसे आया। अब उज्ज्वला योजना की भी हम बात अगर करते हैं तो गांव में मुझे अपना समय याद है, मेरी माताजी कैसे, और मेरी एज के नहीं और भी बहुत से हमसे छोटी एज के भी लोग, उम्र के लोग जानते हैं कि माताओं की आंखें धुंधली पड़ जाती थी और चूल्हे से ना सिर्फ उनको सांस की बीमारी होती थी, आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, उनकी स्किन खराब होती थी, त्वचा रोग हो जाते थे और पूरे घर में धुएं का वातावरण रहता था। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को संबल दिया, उस संबल का ये नतीजा है कि आज महिलाओं की आंखों की रोशनी और सांस की बीमारियां, इसको मापा जा सकता है, सर्वे हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है किस प्रकार से उसमें लाभ हुआ है। अब महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जंगल से लकड़ियां काट के लाने में जो समय लगता था वो एक गैस चूल्हा जलाने में लाइटर की देरी है कि गैस उनके लिए तैयार हो जाती है, और उसमें भी हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर उनको गैस चूल्हे या जो है निशुल्क भी मिले हैं, और जो गैस सिलेंडर है उसमें काफी सब्सिडी मिलती है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई, हमारी माताओं बहनों के लिए। और इसके अलावा आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की स्थिति क्या थी कि भ्रूण हत्या में कई राज्य तो ऐसे थे जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे थे, अब उसका लिंगानुपात जो है वो बहुत ही सुधरा है पिछले 12 वर्षों में, और इसके साथ साथ बेटियों की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई बालक पढ़ता है तो वो सिर्फ पुरुष ही समाज में पढ़ते हैं, अगर घर की बेटी पढ़ती है तो कल को जब विवाह होता है, उसकी बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो ये परिवर्तन भी हमें पिछले 12 वर्षों में देखने को मिला, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में बेटियों को न सिर्फ भ्रूण हत्या और अत्याचारों से उन्हें सुरक्षित किया गया, बल्कि उनकी शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर, उनकी स्किल इंप्रूव करने में तरह तरह की उनकी योजनाएं चला करके बेटी को आत्मनिर्भर बनाया गया। और मोदी जी का शुरू से मानना है, लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि अगर बेटी समाज में पढ़ती है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है।
1: बिल्कुल अजय श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री जन धन योजना को वित्तीय समावेशन की बड़ी पहल माना जाता है और केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की क्या अहमियत रही और क्या इस योजना के जरिए सरकार देश के वंचित गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही?
0: बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों नए लोग जो कि बैंक का दरवाजा खोल करके अंदर घुसने साहस नहीं कर पाते थे, बैंक का चौकीदार उनकी स्थिति देखकर, उनके कपड़े देखकर उनको अंदर नहीं घुसने देता था, अब वो सम्मानित लोग हैं जो बैंक में जाते हैं, सम्मान के साथ उनका खाता खोला गया और वो अपना लेन देन और अपनी बचत बैंक के माध्यम से करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, विश्व में इतने बड़े पैमाने पर बैंक अकाउंट खोले जाएं ये कहीं नहीं हुआ था अगर हम देखें। और मैं आपको बताता हूं कि किन वर्गों को इससे लाभ हुआ। मैं चूंकि समाज में काम करता हूं, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे, जैसे नारी सेवा सदन है शिमला का या हमारा ओल्ड एज होम है, इनमें जो संवासी रहते थे, इनमेट्स रहते थे, उनकी पेंशन मनी ऑर्डर के तौर पर आती थी और उनका कोई खाता नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि जनधन योजना लाए जाने के बाद जितने भी इनमेट्स हैं, चाहे वो नारी सेवा सदन के हैं, चाहे वो हमारे वृद्धाश्रम के हमारे बुजुर्ग हैं, सबके खाते खोले गए। उससे पहले इनका बैंकिंग का रिकॉर्ड ही कोई नहीं था, जबकि आजाद हुए हमें कितने वर्ष बीत गए, इन सभी लोगों के बैंक खाते खुले जो कि कभी बैंकिंग सेक्टर से जिनका वास्ता ही नहीं पड़ता।
1: यानी कि गरीब और ग्रामीण लोगों के साथ साथ जो भी जरूरतमंद लोग थे वो बैंकिंग से जुड़े हैं।
0: बिल्कुल।
1: और सरकारी मदद सीधे लोगों के खातों में पहुंचने लगी है जिससे पैसे देने की व्यवस्था आसान और तेज हुई है।
0: बहुत बहुत आसान। अब जैसे गांव-गांव में बैंकिंग सिस्टम इस प्रकार से फैल गया कि जो लोग जिनके खाते नहीं थे आज नजदीकी ब्रांच में जाते हैं या अगर उनको कहीं राशि जमा करनी होती है तो वो भी उनके लिए संभव है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनके घर पे भी उनको ये सेवाएं मिल जाती हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के जरिए हो और चाहे वो बैंक के जरिए हो।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिना जाता है। आपके अनुभव के आधार पर इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव डाला है?
0: देखिए, मैंने स्वयं देखा है खास करके हिमाचल प्रदेश में, यदि घर का कोई सदस्य गंभीर बीमार हो गया, जैसे कैंसर है या कोई और है या कोई दुर्घटना है और उनको भर्ती होना पड़ता था, तो घर के माता बहनों के जेवर और फिर बाद में जमीन भी बेच करके वो इलाज कराते थे
1: जी।
0: उस स्थिति में और आज की स्थिति में बिल्कुल एक बुनियादी फर्क आ गया है। 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का जो खर्चा इलाज का है वो इन योजनाओं के जरिए सरकार वहन करती है। तो ऐसे बहुत से केस ऐसे हैं जो मैंने स्वयं देखे जिनमें कि वो लोग, जैसे एक बच्चा था हमारा, ब्लाइंड था, ब्रेन ट्यूमर था उसको, सिरमौर जिले का, वो पीजीआई में था और अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो वो शायद इलाज नहीं करा पाता। तो इस प्रकार से एक आम व्यक्ति जिसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके पास जेवर और जमीन बेचने के अलावा कुछ नहीं था, उसको 5 लाख रुपए का उसका इलाज अगर वो भर्ती होता है, ये उसके सपनों से भी बाहर की बात थी।
1: यानी कि इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति की तरह काम किया है।
0: बहुत बड़ी क्रांति। एक तो ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निम्न आय वर्ग के थे, इलाज नहीं करा सकते थे, जिनको कहीं से रिएम्बर्समेंट नहीं होता था, एक तो ये उनका संभव हुआ। दूसरे, जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनको सरकार की ओर से रिएम्बर्समेंट हो जाता है, तो टोटल मेडिकल फील्ड का बिजनेस भी बढ़ा।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, कृषि क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को आप कैसे आंकते हैं, विशेषकर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर?
0: बिल्कुल, ये भी बड़ा आपका सवाल बहुत ही माकूल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों को लेकर के इस देश में बहुत नारेबाजी होती रही, आंदोलन होते रहे और वो राजनीतिक दृष्टि से वोट पाने के लिए था। जो हमारी एनडीए सरकार आई उसमें वोट के लिए नहीं बल्कि किसानों की स्थिति में आमूलचूर परिवर्तन के लिए काम किया गया और उसका नतीजा है कि एक 6,000 रुपए साल की किसान सम्मान निधि तो एक है, उनको समय पर खाद मिलना और ये किसान क्रेडिट कार्ड से उनको समय पर सहायता मिल जाती है, और इसके अलावा उनके बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं। महिलाओं को जो खेती किसानी का काम करती थी लेकिन कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, कोई उनको सम्मान नहीं मिलता था, वो भी एक बहुत बड़ी बात हुई। और

0: सीधी ड्रोन चलाती हैं। ये सारे काम खेती के बिल्कुल सुचारू ढंग से चलने लगे, क्योंकि नीयत सरकार की ये थी कि किसानों की स्थिति, अन्नदाता की स्थिति अगर नहीं बदली तो ये देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है।
1: किसानों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हुआ
0: बहुत
1: है।
0: बड़ा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग हुई है ये, और उस छलांग का ये नतीजा है कि अभी आप गांव में किसी भी किसान से बात करेंगे तो वो कहेगा कि पिछले 12-13 वर्ष से पहले का जो समय था उसमें जो उनको कठिनाइयां थी आज उनमें बहुत आसानी हो गई है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने का सरकार ने दावा किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इस पहल के सामाजिक प्रभाव को कैसे देखते हैं?
0: बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं तो स्वयं इसमें भागीदार हूं। एक ब्लाइंड लड़की थी, माता पिता भी नहीं थे, बहुत जीवन उसका बिल्कुल कष्ट में था। उसका नाम था उषा और वो शिमला की थी।
1: जी
0: इस आवास योजना के लिए उसका नाम आया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि उसका अपना मकान होगा। वो ढारे में या झुग्गी में जैसे भी रहती थी, उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। हमने समाज के सहयोग से पैसे जमा किए और उषा को बड़ी आसानी से नगर निगम शिमला से शहरी क्षेत्र में मकान मिल गया। इसी तरीके से धर्मशाला में भी मैंने देखा, बहुत बड़े पैमाने पर जिन बच्चों के साथ मैं काम करता हूं या हमारे साथी एक लामा है जामयांग जी, उनका टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके सहयोग से वहां पर इस आवास योजना के अंतर्गत उन झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़े पैमाने पर मकान मिले जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, कभी सोचते भी नहीं थे। झुग्गियों में उनके नाती पोते तक झुग्गियों में हो गए थे, अब वो शान से अपने मकान में रहते हैं और उनके बच्चे एक सुरक्षित जगह छत के नीचे बिजली की रोशनी में आज पढ़ाई कर रहे हैं। ये आम लोगों के सामने ये बातें हैं, इसमें कोई दावा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आप स्वयं दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उमंग फाउंडेशन के माध्यम से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में आप केंद्र सरकार की दिव्यांग जन कल्याण योजनाओं को किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मोदी सरकार 2016 में एक नया कानून लाई जिसका नाम था राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उससे पहले दिव्यांग जन कानून था 1995 का, वो बहुत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एक मामले में कि बैडली ड्राफ्टेड एक लॉ है ये। उसके लिए हजारों लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि ये कानून बदला जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, और मोदी सरकार 2016 में एक बिल्कुल नया कानून लाई। पहले कानून में सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगताएं या विकलांगताएं आइडेंटिफाई की गई थी, नए कानून में उनकी संख्या बढ़ाकर 21 हो गई, यानी कि उसका दायरा भी व्यापक किया गया और उसमें जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत से ऐसे वर्गों को उसमें जोड़ा गया जिसमें कि स्पीच इंपेयरमेंट भी है। जैसे पहले था कि जो लोग बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे
1: जी
0: वही लोग दिव्यांगता में आते थे, अब जो सुन सकते हैं बोल नहीं सकते हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो इनके लिए चूंकि इसका दायरा बढ़ाया गया तो बहुत ज्यादा बड़ी आबादी इसके दायरे में आ गई और उनके लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं जैसे उनके लिए लोन देना, उनके लिए मकान के लिए, चाहे चाहे शिक्षा का है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत से बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालयों के ऐसे हैं जिनको कि भारत सरकार से पीएचडी करने के लिए एक दिव्यांग होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती है।
1: जी
0: अगर वो स्कॉलरशिप नहीं होती तो ये दिव्यांग बच्चे नहीं पीएचडी कर सकते थे। इस प्रकार के शिक्षा में भी है, इनको मकान में भी है, लोन लेने के लिए भी है, अगर इनको मकान लेना है तो लोन मिलेगा, रोजगार अगर इनको चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसमें लोन है और बहुत से अन्य लाभ इनके लिए सरकार के नए कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए।
1: यानी कि दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में काम हुआ है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि कोई भी वर्ग अगर विकास की दौड़ से अछूता रह गया तो देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो दिव्यांगजनों की इतनी बड़ी आबादी है जिसको कि विकास की दौड़ से बिल्कुल बाहर रखा गया था, तो मोदी जी ने उनको सहारा दिया, संबल दिया और आगे लाने के लिए उनके योजनाओं के माध्यम से, कोई दया दृष्टि नहीं, चैरिटी नहीं, उनको अधिकार देने के नाते से, अब जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मैं बताता हूँ, वहाँ दिव्यांग बच्चों को बहुत मुश्किलें होती थी, कोई लिफ्ट नहीं थी, रैंप नहीं थे और बहुत से ऐसी चीजें नहीं थी। अब भारत सरकार के सहयोग से वहाँ पर कई लिफ्ट लग गई, रैंप बन गए और बहुत से, और वहाँ पर एक्सेसिबल लाइब्रेरी बनी, उसमें भारत सरकार का पैसा है। एक्सेसिबल लाइब्रेरी में कोई ब्लाइंड बच्चा कंप्यूटर पर बैठ करके आराम से काम कर सकता है। चूंकि मैं विश्वविद्यालय का नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज था, तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि आज से 12-14 साल पहले और आज के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चों की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और जब लोग कहते थे कि इनको भीख दे दो और आगे बढ़ जाओ, अब मैं कहता हूं इनको शिक्षा दे दी गई है, इनको आरक्षण दे दिया गया है, भीख की बजाय ये बच्चे खुद नौकरी कर रहे हैं। और अगर जो देख नहीं सकते हैं वो कार खरीदेंगे और ड्राइवर रखेंगे
1: जी।
0: तो ये परिवर्तन हम सबके सामने है।
1: बिल्कुल प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है, हर सरकार के समक्ष इससे निपटने की चुनौती रहती है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, शुरू में ही जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने जो युवा पढ़े लिखे थे और नौकरी की दौड़ में थे, उनमें सबसे पहले उनको कहा कि आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं अपने परिवार में और बहुत से युवाओं को जो नौकरी कर रहे थे या नौकरी ढूंढ रहे थे और उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, अब वो 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं
1: जी।
0: तो एक ये मानसिकता का बदलाव हुआ कि सरकार की नौकरी ढूंढने की बजाय आप स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू करें, कोई सोशल इंटरप्राइज शुरू करें और दूसरे लोगों को जो उस लेवल पर, आपके लेवल पर नहीं आ पाए हैं, उनको रोजगार दें। इसके साथ ही जो स्किल इंडिया एक योजना है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी काम हुआ है, अभी आप देखें कि हमारी जितनी ITI थे या जितने हमारे पॉलिटेक्निक थे, उसमें कंप्यूटर साइंस का या तो कोई कार्यक्रम नहीं चलता था या बहुत सीमित मात्रा में था, AI तो बिल्कुल नहीं था। अब बहुत से ITI लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर का दायरा है, जिसमें कि बच्चे आज AI की ट्रेनिंग लेकर के, स्किल डेवलप करके समाज में काम करेंगे। और AI का इतना बड़ा इस्तेमाल है, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन का काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो AI के बिना आज नहीं हो सकता है। तो सरकार नौकरी देती है, लेकिन सरकार ने उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम किया कि आज बहुत से लोग जो एक रोजगार ढूंढते थे, आज कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इससे भी बेरोजगारी की दर में और बेरोजगारों की संख्या में पिछले 12 वर्षों में एक मेजरेबल, जिसको मापा जा सकता है, उतनी कमी आई है। ठीक है, दर तो कुछ ना कुछ लगातार बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास भी निरंतर चल रहे हैं।
1: बिल्कुल अजय श्रीवास्तव जी, डिजिटल इंडिया की बात करें तो आज के दौर में जो डिजिटल पेमेंट हो रही है, कैशलेस पेमेंट हो रही है, तो इसे भी एक तरह से क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मोबाइल से सारी पेमेंट्स हो रही है, कैश रखने की जरूरत नहीं है। आप इस डिजिटल पेमेंट के लाभ और चुनौतियों को कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ डिजिटल ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध भी बढ़ रहा है।
0: देखिए, समाज में कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका दुरुपयोग भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन हम देखें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जब दिल्ली आए और मजनू का टीला या किसी स्थान पर मोदी जी के साथ गए और एक छोटी सी शॉप पर या ढाबे पर उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया, तो वो हैरान रह गए
1: जी।
0: मतलब यूरोप के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक कल्पना करना मुश्किल है कि छोटा सा गोलगप्पे वाला भी QR कोड स्कैनर लेकर के बैठा होता है और सारा पेमेंट डिजिटल हो जाता है, 5-10 रुपए से लेकर के बड़े बड़े पेमेंट। तो ये लाभ ये है कि जेब में करेंसी नहीं रखनी पड़ती है
1: जी।
0: फिर कई मित्र देश ऐसे हैं भारत के, जहां जाने पर डिजिटल पेमेंट आसानी से आप कर सकते हैं। वरना क्या था कि आप कोई जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेकर के जाएं, उसके ऊपर फीस ज्यादा लगती थी, ये सब था। अभी कई देशों में मैंने स्वयं इस्तेमाल किया विदेशों में, कि हमारा जो UPI है वो आसानी से, जैसे सिंगापुर है, UPI से वहां पेमेंट हो जाता है। अभी नेपाल में भी शुरू हुआ, भूटान, अभी हम पिछले दिनों गए थे तो भूटान में भी हमने कोई करेंसी जेब से निकाली ही नहीं, सब जगह पेमेंट हमारा UPI से हो गया। तो ये एक आसानी हो गई। और दूसरा, जहां तक साइबर क्राइम है और इसका दुरुपयोग है, तो इस फील्ड में सरकार की ओर से

0: बहुत सुधार किए गए, बहुत काम किए गए, लेकिन अभी भी इससे निपटने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि हम देखते हैं बिल्कुल नए नए तरीके आ जाते हैं
1: जी
0: जो सरकार के नीति निर्माता सोचते भी नहीं है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं उनका भी IQ बहुत शार्प है, वो इस प्रकार के अपराधी हैं, तो इस फील्ड में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
1: अंत में विकसित भारत 2047 के संकल्प को आप एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, पिछले आजादी के बाद से हमने सिर्फ दूसरे देशों की निर्भरता पर फोकस किया कि हम रक्षा मामले हैं, खाद है, अनाज है, हमारा पेट्रोलियम उत्पाद है या अन्य चीजें हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, यही हमारी नियति थी। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित भारत का सपना भी होगा, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम होना चाहिए, और जब से मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, इन्होंने एक संकल्प के तौर पर इसको लिया। और जो कुछ अब जैसे रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में हम देखें, हम कभी भी निर्यातक थे ही नहीं, आज बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों में जा चुकी है, विमान बेचने की तैयारी है,
1: जी
0: गोला बारूद और दूसरी चीजें जा रही हैं। इसके साथ साथ जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, वो लोग सैटेलाइट यानी उपग्रह बना रही हैं और वो लॉन्च हो रहे हैं, तो ये विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आप आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने बेहद सरल व स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी शिमला का भी।
1: श्रोताओं, आज की इस परिचर्चा में हमने जाना कि इन 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चाहे बात गरीबों के कल्याण की, महिलाओं की सुरक्षा हो या किसानों की मदद, मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और उन्हें लागू भी किया। देश के विकास की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सरकार, समाज और नागरिक सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ मुझे उज्जवल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM शिमला रहे थे।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिमला से केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष, उपलब्धियां और विकास की यात्रा। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं न्याय विभाग भारत सरकार के विधिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव पर आधारित समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
4: न्याय विभाग भारत सरकार के विधिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री कविंद्र गुप्ता एवं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधिक एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघावल की गरिमामयी उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की धर्मशाला में क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ अधिवक्ताओं, विधिक अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रस्तुत है समारोह के संपादित अंश। माननीयों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

0: हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से न्याय प्रबोध अवोकनिंग टू जस्टिस का आगाज किया गया और वित्त चित्रों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को जागरूक किया गया।
1: न्याय तभी सार्थक होता है जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उनका

0: कानूनी अधिकारों, उपायों और न्यास तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दिशा स्कीम के अंतर्गत न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत पूरे देश में नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स सोशल मीडिया पोल चलाया गया।
1: सचिव न्याय विभाग श्री नीरज वर्मा ने समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया।
2: नमस्कार, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों में स्थित धर्मशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धौलाधार पर्वतमाला की गोद में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि न्याय के प्रति जन जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों के प्रसार एवं नागरिकों को सशक्त बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय मंत्रालय का इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
1: माननीय विधिक एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघावल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा,
3: आज विधि और न्याय मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बहुत ही पवित्र शहर में, धर्मशाला में, और एक रिफॉर्म उत्सव का कार्यक्रम भी हम यहाँ से आज शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। जो प्रतिभागी आए उन्होंने भी अपनी बात की और अभी प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आपने सुना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जन्म संविधान के कोख से हुआ और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अभी संदेश आपने सुना। संविधान में ही आर्टिकल 39A में ये लिखा कि एक्सेस टू जस्टिस जिन नागरिकों के आने जाने के रास्ते आसान नहीं है, दूर दराज में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां विषम है, ऐसे लोगों को भी न्याय कैसे मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि न्याय बंधु प्रणाली, कॉमन सर्विस सेंटर, इनके माध्यम से टेली लॉ, इनके माध्यम से वो लोग कहीं अपनी बात कहते हैं और सीएससी का आदमी कहता है सुनिए ये वकील साहब का नंबर है, इनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो वो पूछते हैं वकील साहब कोई फीस लेंगे, तो वो कहते हैं वकील साहब कोई फीस नहीं लेंगे, वकील साहब को फीस भारत सरकार देगी, आप उनको अपनी बात कहिए, वो आपको कानूनी सलाह देंगे, उसके अनुसार आप काम करिए और जो कानूनी सलाह का पैसा वकील साहब को देना है वो भारत सरकार देगी। ये ऐसे करके ये प्रोग्राम जो आपके क्षेत्रों में भी चलता है लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं।
1: हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे।
4: मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला। धर्मशाला की इस पावन एवं सुरम्य धरती पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। मैं भारत सरकार के न्याय विभाग को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, शिक्षाविद हैं, विधि विशेषज्ञ हैं तथा

0: प्रतिभागियों का हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिमाचल हमारी देवभूमि है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों के लिए विख्यात है। हमारी परंपरा सदैव न्याय, करुणा, समानता और लोक कल्याण की रही है। इसीलिए न्याय और प्रत्येक नागरिक की सहज और समान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। उसके साथ साथ हमारी जो सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भी है। देवी और सज्जनों, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर टिकी हुई है। हमारा संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक की जो गरिमा है और न्याय तक समान पहुंच की गारंटी भी देता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में निहित अनुच्छेद 39 क राज्य को ये दायित्व सौंपता है कि आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की अक्षमता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे और उसे निःशुल्क वित्तीय विधिक सहायता उपलब्ध हो, जो कि भारत सरकार ने इसको सुनिश्चित किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार का भी बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ। न्याय केवल न्यायालयों में निर्णय प्राप्त करने का विषय नहीं है। न्याय का वास्तविक अर्थ है एक ऐसा समाज जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे, जहाँ अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता होनी चाहिए और जहाँ विधि व्यवस्था नागरिकों के जीवन की अधिक सुगम और गरिमापूर्ण बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश जैसे जो पर्वतीय राज्य हैं, राज्य में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना विशेष महत्व रखता है। हमारे अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विधिक जागरूकता अभियान और स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि दिशा जैसी अभिनव पहल के माध्यम से न्याय को नागरिकों के द्वार तक पहुंचने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीला, न्याय बंधु और लीगल लिटरेसी एवं लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम न्याय को अधिक सुलभ, समावेशी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही भारत के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनेगी। अंत में मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ इस क्षेत्रीय कार्यशाला में होने वाले विचार विमर्श, अनुभवों का आदान प्रदान और नीति संवाद न्याय तक पहुँचने को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं न्याय प्रबोध अभियान तथा सुधार उत्सव की सफलता के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।
1: अभी आप सुन रहे थे न्याय विभाग भारत सरकार के विधिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव के संपादित अंश। स्वर संजीव कुमार, तकनीकी सहयोग अंकित धीमान, प्रस्तुतकर्ता डॉ. जितेंद्र पाल सिंह।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे।
1: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी M. पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
4: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
5: एलएनजी कैरियर दिशा
6: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
8: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
7: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
8: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
7: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding and cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
8: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
7: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
9: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
7: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
10: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism and establishment of consular dialogue. With the report of Smriti Ampalruti, Rupesh Rathore, Akashvani News.
7: Later, Prime Minister Modi also met Slovakian President Peter Pellegrini in Bratislava. Mr. Modi reached Slovakian capital last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Ukraine, Qatar and United Arab Emirates have also been invited for the summit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. We now go over live to our correspondent Ankit Kumar, who is now in Avignon tracking developments on the G7 summit. Ankit, how are the G7 leaders translating their recognition of India's strategic importance into practical cooperation on trade, technology, manufacturing, and supply chain security? And what outcomes are expected from this summit?
11: Yes, Nishit. India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in the concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement, as well as initiatives such as Bharat Innovate in Nice and India's role as the official AI partner country at the upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market, but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing, and resilient supply chains. Significantly, if you see, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including balanced growth, international partnerships, and artificial intelligence, closely align with India's strength and interests. Therefore, beyond the broader geopolitical discussions, the key outcomes to watch will be deeper cooperation in trade, technology, critical minerals, innovation, and investments, as well as how India's perspective and the concerns of Global South are reflected in the summit's deliberation and outcomes. Nishit.
7: Yeah, thank you, Ankit, for the update. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. Defense Research and Development Organization, DRDO, today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defense Minister said that the missile achieved all mission objectives, demonstrating India's growing long-range precision strike capability. Raksha Mantri Rajnath Singh congratulated the DRDO team and the industry partners on the successful flight test of the cruise missile. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government for building modern infrastructure with the vision of making India Viksit Bharat by 2047.
2: Over the past 12 years, India has embarked on an unprecedented journey of transformation, making infrastructure-led development the cornerstone of its growth story. This commitment is reflected in a six-fold increase in government expenditure on infrastructure, rising from 2 lakh crore rupees in 2014-15 to 12.2 lakh crore rupees in the current financial year. India's metro rail network has expanded nearly fivefold to 1,100 kilometers. Talking to Akashwani News, a Delhi resident, Alisha, who commutes with Delhi Metro daily, has shared her experience.
3: Metro to hamari lifeline ban chuki hai.
12: Metro has really become our lifeline. I have to go to Gurugram every day for my office, for which I use the metro. Traveling in the metro is convenient and comfortable, but along with that, the good thing is that it is completely safe. Because of its being safe, my family and I remain worry-free.
2: The national highway network has expanded from over 91,000 kilometers in 2014 to over 1,46,000 kilometers in 2026. Budgetary support for Indian Railways has increased nearly 9 times. This investment has powered modernization and improved passenger experience across the network. A symbol of this new era is the Vande Bharat train, with 162 services now operational, it reducing travel time up to 45%. Talking to Akashwani News, a frequent traveler of Vande Bharat from Lucknow, Pooja said that the train is comfortable and it saves a lot of time.
13: Traveling in the Vande Bharat train brings immense joy. Ever since the Vande Bharat train services started, we mostly travel by it. It is an absolutely excellent train, and the best part about it is that it saves a lot of time during the journey and the seats are very comfortable.
2: Together, these achievements are creating a faster, more connected and more prosperous India, laying the foundation for a Viksit Bharat by 2047. Saklain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
7: Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to land in Jewar from Lucknow this morning. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said, India hopes the implementation of the understanding will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Meanwhile, hours after the United States and Iran announced the peace deal, Israeli Defense Minister Israel Katz has declared that the Israeli military will not pull back from its position across the border. While detailing Israel's security policy, the defense minister stated that the Israel Defense Forces will remain indefinitely in security zones in Lebanon, Syria, and Gaza to protect Israeli citizens. Israeli media reported that Jerusalem has directly communicated its refusal to comply with international withdrawal timelines to U.S. President Donald Trump. The benchmark domestic equity indices today ended trading session with strong gains of nearly 1%. Investor sentiment improved following the announcement of a peace agreement between the United States and Iran. The Sensex surged 736 points to close at 76,264, while the Nifty jumped 231 points to settle at 23,854. The government has said that all refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories and maintaining sufficient stocks of petrol and diesel. Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, was addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia. Joint Secretary in the Department of Fertilizers, Bandana Prayashi, said that the overall stock position of fertilizers in the country is normal. Director in the Ministry of Port Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said that the LNG carrier Disha, with 62,370 metric tons of cargo, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to reach the Dahej port in Gujarat on Thursday. In the FIFA World Cup football, Spain will play against Cabo Verde in their Group H clash at Atlanta in United States tonight. The match will begin from 9:30 p.m. Indian time. Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match in Mexico earlier in the day. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The Met Department has issued an orange color warning for thunder squall conditions in West Rajasthan for tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, the Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim during the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, Inc. 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labour migration, digital technology and defence. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. The French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in the US tonight. And that's all in the news at night. Good night.
14: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं संगीतकार सोहेल सेन। जी हाँ, आज हम सुनवाएंगे इनके संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत।

जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे प्रतिभाशाली संगीतकार से जिन्होंने अपने मधुर धुनों और अलग संगीत शैली से फिल्मी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं संगीतकार सोहेल खान की।

दोस्तों, सोहेल सेन का जन्म 24 जून 1984 को भारत में हुआ। वे एक संगीत परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता समीर सेन प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी दिलीप समीर सेन के रूप में बॉलीवुड में अनेक यादगार धुनें दी। बचपन से ही सोहेल सेन का झुकाव संगीत की ओर गया। घर में संगीत का वातावरण होने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने संगीत रचना, धुन बनाना और गायन की कला में महारत हासिल की।

पाकिस्तान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर

सोहेल सेन ने बॉलीवुड में संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। सोहेल सेन ने कई सफल फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक था टाइगर और गुंडे जैसी फिल्में शामिल हैं। अभी आप सुन रहे हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से ही ये गीत।

सोहेल सेन उन संगीतकारों में से हैं जिन्होंने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। उनका मानना है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है। प्रतिभाशाली संगीतकार सोहेल सेन का ये था संक्षिप्त जीवन परिचय। उनकी संगीत यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि जुनून, मेहनत और समर्पण हो तो व्यक्ति अपने अलग पहचान बना सकता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार सोहेल सेन के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। ये कार्यक्रम आधारित है हिमाचली लोक गीतों पर।

अभी आप सुन रहे थे पवन डोगरा का गाया हुआ ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं नियामत हुसैन का गाया ये लोकगीत।

गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर जी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ आप जुड़ हुए हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि ठीक 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे जी हाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम ये रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए। आकाशवाणी के स्टूडियो का नंबर वही रहेगा 01892224391 तो कॉल करना ना भूलिएगा ठीक 10 बजे से 11 बजे तक। और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इस लोकगीत को गाया है पुष्पलता ने।

0: सीताराम शर्मा और रमेश चंद्र के गाए इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम का। स्वागत सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे कार्यक्रम में। बातों और गीतों के इस मिलजुले सफर में एक बार फिर से हाजिर हैं हम और आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सोमवार का ये खूबसूरत सफ़र जिसे और खूबसूरत बनाती हैं आपकी फ़ोन कॉल्स, जिसमें हम आपसे बातें भी करते हैं, साथ ही सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत उन फिल्मों से जिन्हें हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की फिल्में हैं मदर इंडिया, कोयला, आरजू, दाग, दीवार, डॉन, दो बदन, हिमालय की गोद में कोई आपसा, मिलन, मेरे हुजूर, पाकिजा, वक्त। जी हाँ, ये कुछ फिल्में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर वही है 01892224391। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। और पहले कॉलर हमसे आ जुड़े हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे में स्वागत है। कौन और कहाँ से बात हो रही है, किस से?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से,
0: एमपी से बात। जी, कार्यक्रम में कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म में कौन सी है?
0: जी, मदर इंडिया, कोयला, आरजू, दाग, दीवार, डॉन, दो बदन, हिमालय की गोद में कोई आपसा, मिलन, मेरे हुजूर, पाकिजा, वक्त।
1: आरजू का सुनवा देना।
0: जी, आरजू फिल्म से कौन सा गीत आप आज सुनना चाहेंगे?
1: कुशा भी चला देना। आपके इधर मौसम कैसा है?
0: जी, बरसात हो रही है यहाँ पे, तो आपके वहाँ का कैसा है वेदर ये बताइए।
1: मौसम हमारे इधर तो गर्मी पड़ रही है
0: जी,
1: और लेकिन बादल छाए हैं, लेकिन बादल नहीं है। दोपहर में हुए थे, गर्मी पड़ रही है, गर्मी की उमस है हमारे इधर।
0: जी, चलिए जल्दी ही बरसात भी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम आज आपने कॉल किया इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा। सुनिए आरजू फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद जी।
1: जी, धन्यवाद आपका।

0: जी
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे में आपका स्वागत। कौन बात कर रही हैं?
1: डिंपल कुमार बोल रहा हूँ मैम।
0: सराह से अशोक कुमार जी,
1: डिंपल कुमार,
0: डिंपल कुमार जी, बहुत अच्छा लगता है
1: और
0: हमारे
1: कौन
0: नियमित
1: से शहर
0: श्रोता
1: में?
0: हम संग जुड़ते हैं। तो जी और
1: कौन से शहर?
0: बताइए डिंपल जी, क्या हाल हैं
1: ठीक है मैम।
0: जी? बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: कौन फिल्म का मैम?
0: डॉन फिल्म से कौन सा गीत हम आपके लिए प्ले करें
1: कोई भी मैम, कोई भी रहा।
0: जी? तो हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, उम्मीद है पसंद आएगा। कार्यक्रम में कॉल किया,
1: थैंक यू मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी। मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, क्योंकि आपके जो सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, जैसे कि हेलो फरमाए, हेलो धर्मशाला, या जनवाणी, आरोग्यम, मैं इसमें जोता रहता हूँ कि आकाशवाणी तो मेरा सबसे बेहतर दिनचर्या मेरा आकाशवाणी है।
0: जी
1: के
0: बिल्कुल, हम भी सुनते रहते हैं नियमित, आपकी कॉल जो हैं हर प्रोग्राम में आती रहती हैं। तो बताइए
1: जी।
0: राकेश जी, आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: अभी कौन कौन सी फिल्म है? फिल्म तो मैंने सुनी थी, लेकिन बजे कौन कौन से गाने, क्योंकि
0: जी
1: कौन से मैं ट्राई।
0: अभी हैं हमारे पास मदर इंडिया, कोयला, दाग, दीवार, दो बदन, हिमालय की गोद में, कोई आपसा, मिलन मेरे हुजूर, पाकीज़ा और वक्त।
1: अच्छा, कोयला का गाना बज गया क्या? वो बजा दो।
0: नहीं जी अभी नहीं, बताइए कौन सा बजाएं।
1: कोयला कोयला कोयला का एक गाना, तन्हाई तन्हाई।
0: तन्हाई तो नहीं होनी चाहिए अभी।
1: नहीं, वो गाना एक
0: चलिए, बजा रहे हैं आपके लिए ये गीत। कार्यक्रम में
1: जी
0: कॉल किया,
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा,
1: जी,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बोल रहे हैं से।
0: जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: दो बदन का।
0: जी कौन सा गाना सुनेंगे?
1: कोई सा सुना दो, सभी अच्छे हैं।
0: जी कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, तो सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम, आपकी पसंद गीत हमारे। ये रहे हमारे अगले कॉलर। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम जी, मैं पिंटू बात कर रहा हूँ गांव बलोल से जी।
0: बलोल से पिंटू जी बात कर रहे हैं जी, क्या करते हैं?
1: मैं कारपेंटर का काम करता हूँ जी।
0: जी, फिर तो रेडियो बजता रहता होगा सुबह से लेकर शाम तक।
1: हाँ जी
0: जी, सुनते हैं आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम
1: जी, हाँ जी
0: जी।
1: मैडम,
0: कौन
1: सारे कार्यक्रम सुनता हूँ जी मैं।
0: सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम लगता है आपको?
1: जैसे हेलो फरमाइश, जैसे आज लगा हुआ ये, मतलब फरमाइश के गाने जिसमें, मतलब बहुत
0: हेलो
1: अच्छा
0: धर्मशाला।
1: लगता है जी।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवाए आज हम आपको?
1: मैडम जी, कौन कौन सी फिल्म है बची हैं अभी?
0: मदर इंडिया, दाग, दीवार, हिमालय की गोद में कोई आपसा, मिलन मेरे हुजूर, पाकीजा वक्त।
1: पाकिजा का सुना देना मैडम जी।
0: कौन सा सुनेंगे?
1: पाकिजा का
0: सभी गाने
1: कोई भी
0: बहुत
1: सुनो
0: अच्छे हैं इसके।
1: पाकिजा का कोई भी सुना देना मैडम जी, सभी गाने अच्छे हैं, फिल्म भी अच्छी थी वैसे ही, और गाने भी सभी अच्छे हैं जी।
0: जी
1: जी
0: चलिए,
1: मैडम
0: हम
1: जी,
0: सुना रहे हैं आपको ये गीत, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। कार्यक्रम में कॉल किया पिंटू जी, बहुत अच्छा लगा। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: जी थैंक यू मैडम जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी, नमस्कार जी। कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे में आपका स्वागत। कौन और कहाँ से बात हो रही है, किससे बात हो रही है?
1: संजीव रक्कड़ से बोल रहा हूँ जी। संजीव
0: रकड़ से कौन बात कर रहे हैं?
1: संजीव जी,
0: संजीव जी। संजीव, बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: कौन कौन सी बची मैडम?
0: मदर इंडिया, दाग दीवार, हिमालय की गोद में, कोई आप सा, मिलन मेरे हुजूर, वक्त।
1: वक्त का सुना दो जी, कोई
0: जी,
1: बात
0: वक्त का गीत आपके
1: नहीं,
0: लिए।
1: कोई सुना दो मैडम,
0: जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई अपनी मर्जी सुना दो बजी।
0: जी, चलिए, हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। उम्मीद है पसंद आएगा। कार्यक्रम में कॉल किया, धन्यवाद।

दोस्तों, संगीत वह जादू है जो दिलों को जोड़ता है, यादों को ताज़ा करता है और चेहरे पर मुस्कान ले आता है। जी हाँ, हेलो।

0: जी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: कश्मीर सिंह दिमान बोल रहा हूँ, नंदपुर भटोली।
0: जी, नंदपुर भटोली से एक कॉल आया है हमें, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हम संग जुड़ते हैं।
1: जी
0: बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
1: आज? मैडम आप अपनी पसंद का सुना दो जी।
0: हमारी पसंद का गीत आपके लिए ज़रूर हम आपको सुनवाएंगे। आप बताइए, जैसे मदर इंडिया, दाग दीवार, हिमालय की गोद में, कोई आपसा, मिलन मेरे हुजूर, ये कुछ फिल्म
1: का सुना दो
0: जी।
1: दाग का,
0: दाग फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे जी। कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, यूं ही जुड़े रहिए।
1: धन्यवाद जी।
0: जी

0: हेलो
1: हेलो रेनू जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
0: बस जी बिल्कुल बढ़िया है।
1: पहले फिल्म का नाम बता देता हूँ, शायद कई दफा कॉल पर कट जाती है
0: जी।
1: फिल्म मेरे हजूर का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा रेनू जी।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। और बताइए राणा जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है जी, बड़े मजे में है। मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। जिस हाल में रखे साई है उस हाल में रहना पड़ता है, जिस काम से नफरत होती है वो काम भी करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल,
1: जो रजा है उसी में रहना पड़ता है। कोई घबराने की कोई बात नहीं है, जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, भले के लिए करता है
0: जी। बहुत ही अच्छी।
1: और देख आज मौसम का
0: मिजाज बहुत अच्छे हैं, बरसात हुई है। आपके वहाँ कैसा है मौसम?
1: मौसम कल भी बरसात हुई थी, आज भी हुई है, और थोड़ी गर्मी से बहुत राहत मिली है
0: जी।
1: अब तो ऐसा है कि चादर लेने की, कंबल लेने की नौबत आ गई है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, कल रात को तो ऐसा ही लग रहा था और आज भी कुछ वैसा ही वेदर है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, कार्यक्रम में कॉल किया, शुक्रिया।
1: ठीक है रेनू जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

0: आपके पसंद गीत हमारे ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला से। यूं ही सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और ये रहे हमारे अगले कॉलर। हेलो जी, हम बताना चाहेंगे कि जब भी हमें कॉल करें सिग्नल में रहकर ही कॉल करें। और अब जो हमारे पास फिल्में हैं मदर इंडिया, दीवार, हिमालय की गोद में कोई आपसा, मिलन। जी हेलो, हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम है आपके पसंद गीत हमारे। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं कांगड़ा से बोल रहा हूं
0: जी,
1: कांगड़ा से बोल रहा हूं मैं।
0: हां जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सुभाष बोल रहा हूं
0: जी। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: कोई भी सुना दो अपनी पसंद का।
0: जी
1: हाँ जी, कोई भी,
0: कोई भी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए फिर, आपने हमारी पसंद पूछी तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। सुभाष जी कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ जी, मैं शारदा बात कर रही हूँ,
0: कहाँ से
1: मैं बैजनाथ से। हाँ
0: जी?
1: जी, हाँ जी,
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं? आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: हाँ जी मैम, सुन रही हूँ। बहुत देर से ट्राई भी कर रही हूँ, फोन तो बिजी आ रहा था, अभी जाके लगा
0: जी
1: है।
0: जी जी सभी अभी कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए बिजी आता है ज़्यादातर।
1: हाँ जी मैम,
0: तो
1: बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है आपका ये अभी।
0: चलो जी, थैंक यू सो मच। और बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप
1: मैम, हिमालय की गोद में
0: जी? उस फिल्म का कौन सा गीत हम आपके लिए प्ले करें?
1: चांद सी महबूबा हो मेरी।
0: क्या बात है, आपके लिए
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: गाना डेडिकेट किया होगा, है ना?
1: हाँ
0: तभी
1: जी मैम, वो ना कभी कभी पति गा लेते हैं मेरे लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, जरूर
1: हाँ
0: हम
1: जी मैम,
0: आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत। कार्यक्रम में
1: हाँ
0: कॉल
1: जी,
0: किया, अच्छा लगा, यूं ही जुड़े रहिए
1: हाँ
0: हमारे
1: जी
0: साथ।
1: मैम, धन्यवाद मैम,
0: जी जी
1: धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल।

0: आपके पसंद गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार जी,
1: मैडम मैं अशोक कुमार बोल रहे हैं।
0: बटाले तो
1: जी,
0: आप भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, कॉल किया है और आप हैं हमारे आखिरी कॉलर। जी हाँ, जल्दी से बताइए। अब हमारे पास फिल्में हैं दीवार मिलन दो हैं ये फिल्में, तो बताइए कौन सी फिल्म का गीत आपके लिए प्ले करें? दीवार फिल्म से जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? जी कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, यूं ही जुड़े रहिए।

0: बहुत सी कॉल्स अभी भी हमें आ रही हैं, लेकिन समय की कमी के कारण अब हम और कॉल्स नहीं शामिल कर सकते। वादा करते हैं अगले कार्यक्रम में ज़रूर हम शामिल करेंगे। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। अब अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल के रक्षा मंत्री

0: इसराइल गार्ड्स ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil.